मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप वेब्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इसमें प्रातः के 5:56 और 44 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में

0: आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ज्वार की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज हम ज्वार की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार की खेती हम दो मतलब से करते हैं, एक तो अपने खाने के लिए और दूसरा अपने जानवरों के लिए। अपने लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा प्राप्त करने के लिए इस समय आप ज्वार की बुआई कर सकते हैं। आइए पहले अनाज उत्पादन के लिए और फिर इसके बाद चारे के लिए इसकी उन्नतशील ढंग से खेती के बारे में चर्चा करते हैं। दाना प्राप्त करने के लिए ज्वार की बुआई करने का सही समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होता है। अतः आप खेत तैयार करके और सही समय पर बुआई करें। इसके लिए वही भूमि उपयुक्त होती है जो बलुई या दोमट किस्म की हो, तथा यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि खेत में ज़्यादा पानी न लगने पाए, यानी फालतू पानी के निकासी की व्यवस्था हो। खेत के चुनाव के बाद उसकी एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो तीन बार कल्टीवेटर से जुताई करके खेत तैयार कर लेते हैं। खेत में अगर दीमक लगने की संभावना हो तो 25 से 30 किलोग्राम लिंडेन चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में भलीभांति मिला देना चाहिए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं वह हैं CSB13, मऊ टाइप 1, मऊ टाइप 2, वर्षा, CSH16, CSH9 और CSH14 इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि अगर एक एकड़ खेत में बुआई करना है तो 5 से 6 किलोग्राम बीज लगेगा। बीज का जमाव अच्छा हो और उसमें कंडुआ रोग न लगने पाए इसके लिए बीजोपचार करते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए थीरम दवा लेते हैं। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है, यानी अगर 5 किलोग्राम बीज है तो लगभग 12.5 ग्राम दवा लगेगी। बुआई हल के पीछे कुणों में करनी चाहिए तथा एक कुण से दूसरे कुण की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भी बोते समय ही करते हैं। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच के बाद मालूम हो जाती है। अगर मिट्टी की जांच न करवा सकें तो संकर प्रजातियों के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में कुंड में डालकर फिर बीज डालते जाते हैं। अगर एक एकड़ खेत है तो 32 किलोग्राम नत्रजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में। कहने का मतलब ये कि 64 किलोग्राम यूरिया, 96 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश खेत में कुंड में डालकर और फिर पीछे पीछे बीज बोते जाते हैं। यूरिया की इतनी ही मात्रा को बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। ज्वार अक्सर अरहर के साथ मिलाकर भी बोते हैं, लेकिन इससे उपज अच्छी नहीं मिल पाती। अगर दोनों को बोना है तो अरहर की दो लाइनों के बीच में ज्वार की एक लाइन बोना चाहिए। आइए अब कुछ चर्चा चारे के लिए ज्वार की खेती के बारे में करते हैं। चारे के लिए ज्वार की जो उन्नतशील किस्में हैं वह हैं मीठी ज्वार PC6, यूपी चरी नंबर 1, यूपी चरी नंबर 2। इनकी बुआई जून माह से लेकर जुलाई माह तक आप किसी भी समय कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इसमें 80 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब ये कि 32 किलोग्राम नत्रजन तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से तत्व के रूप में आवश्यकता होती है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ज्वार की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ज्वार की खेती विषय पर

दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। यशोदा के कृष्ण ने बंसी बजाकर सबको नचाया और दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया।

हे नाथ, भगवान श्री कृष्ण की आइए आराधना करते हैं जो उद्धार करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान से प्रार्थना हम करते हैं कि यह संसार रूपी मोह का सागर बहुत गहरा और अपार है, मुझे पार उतार दीजिए।

भगवान श्री हरि के नाम हे राम हे श्याम का नाम लेते ही मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भक्ति ही एकमात्र उपाय है शांति का और भगवान कृपा से जीवन तर जाते हैं।

0: आराधना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रीति सागर, विदुषी गिरजा देवी और हरिहरण के गाए भजन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: सेवा व्यक्ति की जाती है, भक्ति समाज की।

0: भक्ति के लिए अहंकार शून्यता, तपस्या के लिए ध्येय, साधना के लिए तन्मयता और सेवा के लिए विवेक तथा विनय अपेक्षित है। कांवड़ में बिठाकर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने वाले श्रवण ने सेवा बोध कराया। माँ बाप की सेवा कर रहे पुंडलिक से भेंट करने स्वयं भगवान पांडुरंग आए, किंतु वह उनका अभिनंदन करने खड़ा नहीं हुआ, वरन सेवा कार्य में निमग्न रहा। गुरु की सेवा करने के अनेक प्रसंग हैं। राज्य, स्वर्ग, अपवर्ग की कामना त्याग कर आर्तजनों की पीड़ा दूर करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उपनिषदों में कहा भी गया है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हरि तुम हरो जन की भीड़। गाने वालों को स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की उपासना करने को कहा। चर्चा के अनुरूप अर्चा महात्मा गांधी ने की और करोड़ों लोगों को, जिन्हें दो वक्त खाने को नहीं मिलता था, रोटी एवं घी के रूप में ईश्वर के दर्शन कराए। नित्य क्रिया से निवृत्त हो महर्षि रमण प्रतिदिन चुपचाप नदी के किनारे स्थित एक झोंपड़ी में रहने वाले कुष्ठ दंपति की सेवा में पहुँचते, उनके घाव धोते, दवा लगाते, नहलाते, फिर खिचड़ी खिलाकर आते थे। तब प्रचार हुआ कि 3 घंटे एकांत में भगवान उनके साथ होते हैं। जिन्होंने देखा उनकी आँखों में आनंद आश्रु निकले और उसी को देव दुर्लभ सेवा मानकर कहा गया, सेवा धर्म अगम्य है। सेवा धर्म है परम गहनो योगिनामप्यगम्य है। कलकत्ता की सड़क पर पड़ी मरणासन्न महिला के गांवों से रेंगते कीड़े निकाले, उसे गर्म पानी से स्नान कराकर कोमल सैया पर लिटाया तो इंसान की तरह सुख की अंतिम सांस लेते हुए महिला बोली, माँ तेरेसा की सेवा भीषण आतप में वर्षा की शीतलता भरी फुहार की भांति शांतिदायक है। परमात्मा तक पहुँचने की आकांक्षा से जैसे धार्मिक लोग सेवा करते हैं, वैसे सत्ताकांक्षी भी लोक सेवा, समाज सेवा, ग्राम सेवा, नगर सेवा और देश सेवा करते हैं। बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय कुछ लोग पार्टी को हित में ध्यान में रखकर सेवा देते हैं, कुछ लोग धर्म संप्रदाय को ध्यान में रखकर सेवा करते हैं। भेद वृत्ति से सेवा करने के कारण राहत सामग्री तो बढ़ जाती है, पर कृति अभेद की पोषक नहीं होती। कुछ हिंदुओं की सेवा होती है, कुछ मुसलमानों की सेवा होती है, या कुछ अन्य लोगों की भी सेवा होती है, लेकिन मानवता विभाजित हो जाती है और उसके दिल के टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए संत विनोबा ने कहा है कि सर्वभूतरांतरात्मा, जब तक सर्वभूत को एक रूप में मानने की मानसिकता नहीं बनती तब तक सेवा नहीं होती। इस निश्चय के साथ निष्काम भाव से सेवा होती है तभी सेवा सेवा होती है, अन्यथा सेवा असेवा बन जाती है। उससे भिन्न भिन्न सेवाओं में झगड़े पैदा होते हैं, अलग अलग गुट बनते हैं और मानसिक संकुचितता आती है। जब कोई माँ अपने बच्चे की नाक साफ करती है तो वह यही मानती है कि मैं बच्चे के बिगड़े हुए अंग की सेवा कर रही हूँ। वैसे ही समाज का जो भाग बिगड़ा है, पीड़ित है, उसकी सेवा करनी चाहिए। रत्नागिरी जिले में अप्पा साहब पटवर्धन समाज सेवा किया करते थे। बापू ने उन्हें अन्य क्षेत्रों में सेवा के लिए आमंत्रित किया। वे बोले, मैं रत्नागिरी को ही छोटा विश्व मानकर बैठा हूँ, यहीं मुझे सेवा करना है। स्वदेशी धर्म के अनुसार मैं इस जिले की ही विश्व रूप मानकर सेवा करूँगा। ऐसी सेवा ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, चित्त, बुद्धि आदि को शुद्धि करने से ही सत्य है। शुद्ध मन से हनुमान की गई सेवा की सराहना करते हुए भगवान राम ने कहा है, प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख हो न सकही मन मोरा। प्रसंगानुसार जटायु ने माँ सीता की रक्षा में अपने प्राण त्यागे, तो उसी से प्रेरित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये पंक्तियाँ लिखी है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सेवक के लिए ये पंक्तियाँ आदर्श वाक्य है, जिसे ध्यान में रखकर अपना कार्य करना चाहिए।
1: ये था आज का विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है।

0: देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मधुमेह कारण लक्षण और उपाय विषय पर डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे से ये जानकारी।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर प्रवीण पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने बात किया था मधुमेह के लक्षण, जांच और डायग्नोसिस के बारे में। इस भाग में हम समझेंगे मधुमेह शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और क्यों समय पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। डायबिटीज शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। श्रोताओं, बहुत लोग सोचते हैं कि डायबिटीज मतलब केवल शुगर बढ़ना है, लेकिन सच्चाई यह है कि डायबिटीज मेलाइटस धीरे धीरे पूरे शरीर की ब्लड वेसल्स और नर्व्स को खराब कर देता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? जब लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, तब एक्स्ट्रा ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन खराब होने लगता है, नसें कमजोर होने लगती हैं, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम पहुँचता है और फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू होने लगती है। सबसे पहले असर कहाँ पड़ता है? हार्ट। जी हाँ, डायबिटीज हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा रिस्क। लगातार बढ़ी हुई शुगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में हार्ट केयर बहुत जरूरी है। ब्रेन पर असर, डायबिटीज स्ट्रोक यानी पैरालिसिस का रिस्क भी बढ़ाता है। जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई प्रभावित होती है तो कमजोरी, बोलने में दिक्कत, शरीर के एक हिस्से में लकवा जैसी समस्याएं हो सकती। किडनी पर असर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है, यह हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। डायबिटीज धीरे धीरे किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआत में यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और यदि शुगर अनकंट्रोल्ड रहे तो किडनी फेलियर तक हो सकता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट समय समय पर जरूर कराना चाहिए। आंखों पर असर, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आंखों की रेटिना बहुत डेलिकेट होती है, हाई शुगर रेटिना की छोटी नसों को डैमेज करती है, ब्लीडिंग करा सकती है, विजन धीरे धीरे कम हो सकता है और सीवियर केस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। जी हाँ, अंधापन भी हो सकता है। इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट को नियमित आई चेकअप भी करवाना चाहिए। नसों पर असर, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज नर्व को कमजोर कर देता है, जिसके सिम्टम्स यानी लक्षण पैरों में जलन, झंझनाहट, सुन्नपन, सेंसेशन कम होना। कई मरीज कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पैरों में चीटियां चल रही हैं, तो कुछ कहते हैं जैसे हमारा पैर का तलवा मोटा गद्देदार हो गया है और सेंसेशन कम हो गया है। डायबिटीज में घाव देर से क्यों सूखता है? यह बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके पीछे तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इन्फेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि शुगर का मीडियम बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। तीसरा, नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए चोट का पता देर से चलता है, इंसान को उसका सेंसेशन होता नहीं और वो धीरे धीरे घाव ज़्यादा होता जाता है। डायबिटिक फूट में सेंसेशन कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई खराब हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाए तो पैरों में अल्सर बन जाते हैं, इससे डायबिटिक फूट कहते हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो गैंग्रीन, यहाँ तक कि एम्प्यूटेशन यानी कि पैर को काटना भी पड़ सकता है। इसलिए पैरों की देखभाल भी बहुत जरूरी है। नंगे पैर ना चलें, रोज पैर की देखभाल करें, छोटी छोटी चोटों को भी नज़रअंदाज ना करें, आरामदायक फुटवियर पहने, शुगर कंट्रोल रहे, बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, रेगुलर चेकअप होते रहे तो कॉम्प्लिकेशन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। एक बहुत ज़रूरी बात, कई मरीज तब तक इलाज में लापरवाही करते रहते हैं जब तक कॉम्प्लिकेशन शुरू ना हो जाए, लेकिन याद रखिए डायबिटीज का नुकसान धीरे धीरे और चुपचाप होता है, इसलिए प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे मधुमेह कारण लक्षण और उपाय विषय पर डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की आज 11वीं कड़ी प्रसारित होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित कृष्णा राम चौधरी का शहनाई वादन, और दिन में 12:45 पर कुमार सारंग चौधरी का संतूर वादन सुनिएगा।

श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे उत्तरा केलकर और ए हरिहरण। हम थोड़ी देर में आपको आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे।

गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर, झंकार सुबह 10 बजे और दिन में 11 बजे सुनिएगा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। दिन में 12:30 पर और रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में चंद्रा रानी की गाई गजलें होंगी। दिन में 1:15 बजे अंगनैया कार्यक्रम में महिलाओं में गर्भधारण की समस्या और गर्भ संस्कार का आध्यात्मिक एवं चिकित्सीय दृष्टिकोण, इस विषय पर आप सुनेंगी डॉक्टर अनीता चौधरी की बातचीत, साथ ही होगा गीत संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में 5:00 बजे मालिनी अवस्थी के गाए अवधि गीत आप सुनेंगे। 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात मेरी पसंद, यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत। शाम 6:30 पर कृषि जगत में किसान भाई सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत सुनेंगे, जिसका विषय होगा तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव। इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार यादव।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा सुबह 9:50 पर, दिन में 1:45 पर और शाम 6:30 पर किसी जगत कार्यक्रम में। कलाकार होंगे मोहम्मद इस्लाम। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति।

0: विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44.5 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 अथ च 25-2000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

हेलो हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणें गंगा जी की लहरों पर अपनी आभा बिखेर चुकी हैं। मंदिरों की घंटियां वातावरण को भक्तिमय बना रही हैं और काशी की गलियों में एक नई सुबह दस्तक दे चुकी है। तो आइए इसी सकारात्मक ऊर्जा बनारसी अंदाज के साथ स्वागत है आपके अपने नंबर वन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस में। मैं हूँ आपकी मॉर्निंग साथी शुचि और अगले कुछ पलों तक हम साथ साथ करेंगे बातें काशी की संस्कृति, परंपराओं, ताजा खबरों और इतिहास में आज के दिन की। तो अपनी सुबह की चाय की पहली चुस्कियों के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। गुड मॉर्निंग।

0: पड़ी। जागो जागो जागो, सुबह आ गई, जल्दी से लो चाय ठंडी हो गई।
1: जी हाँ दोस्तों, कड़क गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आप भी जाग जाइए और आज अपनी इस सुबह में चलिए हम आपको सैर कराते हैं काशी के ऐतिहासिक और शांत घाट यानी शिवाला घाट की। तो चलिए आज जानते हैं शिवाला घाट से जुड़ी कुछ अनकही दिलचस्प किस्सों के बारे में।

शिवाला घाट का इतिहास बहुत ही रोचक और समृद्ध है। इस घाट का निर्माण 18वीं शताब्दी में बलवंत सिंह द्वारा कराया गया था। समय के साथ ये घाट कई हिस्सों में बट गया, लेकिन प्राचीन घाट का उत्तरी भाग आज भी अपने पुराने नाम से ही पहचाना जाता है। 19वीं शती के उत्तरार्ध तक ये घाट विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, जो वर्तमान शिवाला घाट से लेकर दक्षिण में पंचकोट घाट तक जाना जाता था। इस घाट पर कई महत्वपूर्ण भवन भी स्थित हैं, जिनमें नेपाल के राजा संजय विक्रम शाह द्वारा निर्मित विशाल भवन और शिव मंदिर प्रमुख है। इसके अतिरिक्त काशीराज द्वारा स्थापित ब्रह्मेंद्र मठ भी यहाँ स्थित है, जो दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी है। हालांकि इस घाट का धार्मिक महत्व सीमित है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये घाट 20वीं शताब्दी तक विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। चेत सिंह घाट पर होने वाले बुड़वा मंगल मेले का क्षेत्र भी इस घाट तक विस्तृत था, जो इसे और भी ऐतिहासिक बनाता है। इस घाट का पुनर्निर्माण सन 1988 ईस्वी में राज्य सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग द्वारा किया गया। ये घाट बलुआ पत्थरों से बना एक सुदृढ़ एवं स्वच्छ घाट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सैर शिवाला घाट की। गंगा की शांत लहरें, सुबह की सुनहरी धूप, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और इतिहास की अनगिनत परतों को अपने भीतर समेटे शिवाला घाट काशी की उस विरासत का हिस्सा है, जो समय के साथ और भी अधिक गौरवशाली होता जाता है। यहाँ कुछ पल बिताने के बाद ऐसा महसूस होता है मानो मन की सारी व्यस्तताएं गंगा की धार के साथ बह गई हों और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। यही तो खासियत है काशी के घाटों की। ये केवल स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को सुकून देने वाले अनुभव है। तो चलिए, शिवाला घाट की इन पावन सीढ़ियों से अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने साथ लेकर चलते हैं यहाँ की शांति, सकारात्मकता और गंगा मैया का आशीर्वाद। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, बातें तो हम आपसे और भी करते रहेंगे, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ा

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। और दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं सुबह के 7:09:45। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। टीबी मुक्त भारत अभियान को मिला बल। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने 50 मरीजों को वितरित की पोषण की पोटली। जी हां दोस्तों, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कबीर चौरा स्थित एसएसपीजी मंडलीय चिकित्सालय में क्षय रोगियों के लिए पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर 50 क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस अवसर पर डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि क्षय रोग पूरी तरह उपचार योग्य बीमारी है। समय पर जांच, नियमित दवा सेवन और संतुलित पोषण के माध्यम से इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन में जन सहभागिता और पोषण की सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने समाज के सक्षम एवं जागरूक लोगों से निश्चय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायता करने का आह्वान किया और भविष्य में भी हर संभव सहयोग का

आश्वासन दिया। कार्यक्रम में SSPG मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने बताया कि टीबी मरीजों के लिए आवश्यक जांच, दवाएं और उपचार की भी सभी सुविधाएं अस्पताल में पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि उपचार के दौरान किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय ने बताया कि जनपद में 3 हैंडहेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीनों के माध्यम से व्यापक टीबी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल एक्सरे, बलगम जांच, टीबी के लक्षणों की पहचान और जागरूकता कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब वाराणसी के प्रत्येक विकास खंड में ट्रूनॉट मशीन उपलब्ध है, जिससे टीबी की आधुनिक और सटीक जांच स्थानीय स्तर पर भी संभव हो सकेगी। इससे मरीजों को कम समय में रिपोर्ट और उपचार की सुविधा मिल जाएगी। 48.88 करोड़ की विकास योजना से बदलेगी काशी की तस्वीर, विरासत और आधुनिकता का होगा अनूठा संगम। जी हां दोस्तों, काशी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से नगर निगम ने 48.88 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी विकास योजना तैयार की है। इस योजना के तहत शहर के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे वाराणसी की वैश्विक पहचान और अधिक मजबूत होगी। नगर निगम की इस व्यापक कार्य योजना में यातायात और पार्किंग व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र सारनाथ में अत्याधुनिक स्वचालित स्लाइडिंग पजल पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। इससे वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुगम होने के साथ साथ ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी। वहीं मणिकर्णिका घाट के आसपास बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय सब्जी मंडी का पुनर्व्यवस्थीकरण तथा दो पहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थल विकसित किया जाएगा। धार्मिक महत्व वाले पिशाच मोचन कुंड को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया है। यहां हर वर्ष पितृपक्ष और अन्य धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2.34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक शौचालय, शुद्ध पेयजल, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे आने वाले लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सके। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों को हेरिटेज स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिंट हाउस और नदी से तिराहे पर बनारस की प्राचीन स्थापत्य शैली पर आधारित ट्रैफिक बूथ और पारंपरिक डिजाइन की बड़ी घड़ी स्थापित की गई है। प्रथम चरण में 3.10 करोड़ रुपए की लागत से कचहरी, पुलिस लाइन, सुंदरपुर और भिखारीपुर चौराहों का सुंदरीकरण और पुनर्विकास किया जा चुका है। इसके अलावा बाबतपुर एयरपोर्ट रोड से शहर की ओर आने वाली VIP मार्गों को स्पिरिचुअल गेटवे के रूप में विकसित करने की योजना है। इस मार्ग पर 2.35 करोड़ के रुपए की लागत से भव्य महाकाल स्तंभ पिलर्स स्थापित किए जाएंगे, जो काशी के आध्यात्मिक पहचान को दर्शाएंगे। शहर की रात्रिकालीन सुंदरता को बढ़ाने के लिए मैदागिन चौराहे से गौदौलिया चौराहे होते हुए गिरजाघर चौराहे तक हेरिटेज लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। लगभग 3.98 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य के बाद पूरा मार्ग आकर्षक रोशनी से जगमगाएगा और पर्यटकों को काशी की भव्यता का नया अनुभव मिलेगा। कम वर्षा की आशंका के बीच सरकार की नई रणनीति, किसानों को वैकल्पिक फसलों और प्राकृतिक खेती पर जोर, कृषि मंत्री ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मौसम की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में नई रणनीति लागू करने का फैसला किया है। वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जा सके और उत्पादन पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। कृषि मंत्री ने बताया कि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा एल नीनो प्रभाव और सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए प्रदेश के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को धान की पारंपरिक खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तकनीक से कम पानी में खेती संभव होने के साथ साथ उत्पादन लागत में भी कमी आती है और किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में

40,000 क्विंटल मूंगफली बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कम वर्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धान की उपयुक्त किस्मों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। उर्वरकों की उपलब्धता पर जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान समय में 14.84 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.11 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 4.81 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 4.02 लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 1.03 लाख मीट्रिक टन पोटाश का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 11 जून में क्या है खास।

सन 1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। सन 2003 में आज ही के दिन कोर्निकोवा महिला टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित हुई थी। सन 2006 में आज ही के दिन नेपाली संसद ने आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त किया था। सन 2007 में फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लार्डसेनिया करासे को राजधानी सुवा में प्रवेश की इजाजत मिली थी। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की कुछ खास बातें। और अब समय हो गया है दोस्तों आप सबसे टाटा बाय करने का। मिलूंगी जल्दी आपसे कुछ और अपनी काशी से जुड़ी अनकही बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से कुछ ही समय में।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
3: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
3: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
3: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। कहा, पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव

0: पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस अवसर पर कल नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से

0: अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटानी अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, संभल और पीलीभीत सहित कई जिलों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल भी कुछ स्थानों पर बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। वहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात 11:15 उस समय हुई जब एक बेकाबू SUV ने पीछे से 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। कहा, पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है

0: उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित कृष्णा राम चौधरी और साथी का शहनाई वादन। राग है नट भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी का शहनाई वादन, राग था नट भैरव। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25

0: करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर

0: पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अच्छा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड

0: कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओर्मुज़ जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।

0: अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरिमा के आज के इस सफ़र में हम सफ़र है आपका दोस्त ज्योति स्वरूप। नमस्कार।

0: दोस्तों, कुछ मुलाकातें बड़ी सुकून देती हैं, पर वक्त हमेशा कम पड़ जाते हैं और बातें मुलाकातों की अधूरी रह जाती हैं। मिलने की चाहत और बढ़ जाती है।
1: फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे कार्यक्रम मधुरिमा। चाहूं भी तो मैं कैसे कहूं, दिल से जुबान ये कहता है, लहरें सपनों की कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियां, रात से है लंबी कहीं, दिल की ये दास्तान कैसे कहूं।

जिंदगी लेके आई है बीते दिन की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, दिल की चाहत से हमें देखिए दिल में मगर जलते रहें चाहत के दिए, तेरे लिए तेरे लिए।

नहीं याद कब से, मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गज़ल है, बड़ी बेकरारी मुझे आज कल है।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
3: चंदौली में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह व साधना सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार आम के पौधे का रोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अधिक वृक्षों को रोपित करने की अपील करते हुए कहा कि वृक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के बारे में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि जनपद में स्वच्छ व समृद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण हेतु जागरूक करें और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताएं। राज्यसभा सांसद ने बताया कि
4: प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत जरूरत है कि पर्यावरण को हम बचाएं। धरती जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है।
3: मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि जिले भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि इसमें अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने नारायणपुर पंप कनाल नहर में सफाई एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लौदा गाँव के पास नहर में साइड स्लोप एवं ड्राइंग के अनुसार नहर की चौड़ाई, गहराई और किनारों का ढलान कार्य की गुणवत्ता पर की। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नहर के किनारे तटबंध की मिट्टी को ठीक ढंग से दबाएं, जिससे नहरों में पानी के दबाव से तटबंधों का कटाव न हो। इसके अलावा

0: उन्होंने नहर में पक्की दीवार निर्माण का एवं उसकी मोटाई और मजबूती की भी जांच की। उन्होंने सहायक अभियंता अनुराग सिंह को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोताही न बरतने और कार्य को तय मानक में तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर टेक्निकल टीम से जांच सुनिश्चित होगी। यदि निर्माण में गुणवत्ता की कमी और अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने जैसी समस्या आई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मानकों के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग या तय समय में काम पूरा न करने पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता चंद्र प्रभा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विगत दिनों चंदौली के साहबगंज विकास खंड के मसोई गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों ने चौपाल लगाई। चौपाल में स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समर्थ भारत और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत बृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में लोगों को किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला उद्यान विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अभयदीप गौतम ने कृषकों को धान के बीज शोधन की विधि, प्रमाणिक बीज की उपलब्धता, धान की नर्सरी का प्रबंधन और धान में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं उसके नियंत्रण उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उद्यान वैज्ञानिक मनीष सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व, वृक्षारोपण की आवश्यकता, फलदार पौधों के रोपण की विधि, गड्ढों की तैयारी एवं खाद प्रबंधन के विषय में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी शैलन दुबे ने किसानों को उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं, पौधरोपण कार्यक्रमों और सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि
1: खेत बचाओ अभियान, इसके अंतर्गत हम लोग जो किसानों को हम लोग अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसी के परिपेक्ष में पिछले एक माह से एक जागरूकता कार्यक्रम चल रहा था संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं प्रबंधन, उसी की कड़ी में अब यह खेत बचाओ अभियान का कैंपेन चल रहा है जो कि 1 से 31 जून तक चलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती तकनीकी दे रहे हैं, जो उनके पैकेज हैं प्राकृतिक खेती के बारे में उनका प्रयोग कैसे करें, और हम दलहनी फसलों का समावेश कर रहे हैं, हरी खाद बनाने के लिए सनई ढैसा के साथ साथ उर्द मूंग के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
0: चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढैसा के बीज और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वे किस अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग न करें।
2: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का।
3: बलरामपुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार गांव का भ्रमण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के नेपाल सीमा से सटे ग्राम बारहवा का भ्रमण कर ग्राम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं एवं योजनाओं के लाभ के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने ग्राम में पेयजल, विद्युत, सड़क, राशन वितरण, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रखा जाए। बलरामपुर में यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं आईएससी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में जनपद स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पलटू राम ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में नकलविहीन एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का वास्तविक सम्मान प्राप्त हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं, सुझावों एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पूर्व सैनिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपद बलरामपुर में सरकारी गेहूं के केंद्रों पर इस वर्ष खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है। 15 जून तक खरीद की अवधि निर्धारित है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद कर ली है। बलरामपुर में 17,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद

0: का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 18,300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, यानी लक्ष्य के मुकाबले 105% खरीद दर्ज की गई है। इस अभियान से अब तक 3,532 किसानों को लाभ मिला है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि सभी किसानों के खातों में भुगतान भेज दिया गया है। 152 किसानों का भुगतान अगले 2 दिनों में कर दिया जाएगा। बताया कि अभी 15 जून तक गेहूँ की खरीद जारी रहेगी। वहीं गेहूं के केंद्र मंडी समिति भगवतीगंज में गेहूं बेचने आए किसान विजय कुमार ने कहा कि सरकार की अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम मध्यनगर बिलोहा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद को 293.95 करोड़ रुपए लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर संकरी का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा जल है तो कल है का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक 2026 तक स्वनिधि महोत्सव विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद की सभी नगर निकायों में लोक कल्याण में लोक आयोजन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा बताया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस विशेष अभियान में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कर उन्हें 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न मत्स्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से मत्स्य विभाग बलरामपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बलरामपुर में भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी अस्पतालों में हीट वेव से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों को बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है एवं किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में संपर्क करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंदौली और बलरामपुर जिले की हलचल।
3: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी गुड़िया, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, पुत्री हैं श्री अमरनाथ की, निवासी ओइनी मिश्र, थाना है शाहगंज, जिला सोनभद्र। ये दिनांक 21 मार्च 2026 को शाम 6 बजे से घर से लापता हैं। इनकी लंबाई 4 फीट 11 इंच, इनका रंग गोरा है, शरीर इनका इकहरा है, चेहरा लंबा है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार किस्मतिया देवी, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, पत्नी है संजय कुमार की, निवासी ग्राम मझौली, थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र। इनकी लंबाई 5 फीट है।

चेहरा लंबा है, एक गहरा बदन है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र को सूचित करें या नजदीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, पुत्री फूलमती, निवासी टापू खास, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 1 इंच है, रंगोरा है, एकहरा सामान्य चेहरा है। ये 6 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया सूचित करें थाना जुगैल, जिला सोनभद्र को, या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी लखनऊ के सभी सामईन को मेजबान आसिफ इकबाल और शमसुल आरफिन की तरफ से आदाब। आप सभी का आज के नगमगी प्रोग्राम में इस्तकबाल है। उर्दू अदब में यूं तो एक से बढ़कर एक सुखनवर गुजरे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने उदासी को मुस्कुराहट का लिबास पहनाया, जिसने सफरनामों को दास्तान बना दिया और जिसकी शायरी सुनकर दिल आज भी भर आता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूँ उर्दू के मायना शायर, मजाह निगार और सयाह इब्ने इंशा की।
2: इंशा जी का नाम जहन में आते ही उनकी लिखी वो लाफानी गजल गूंजने लगती है। इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या।
1: आज के इस सफर में हम इंशा जी की जिंदगी, उनके आवारा मिजाज और उनकी लाजवाल तहरीरों की सैर करेंगे। कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ ना कहो, खामोश रहो ऐ लोगों, खामोश रहो। हाँ ऐ लोगों, खामोश रहो।

0: इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। वो 15 जून 1927 को पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुए। वो यूनेस्को जैसे आलमी इदारे से भी वाबस्ता रहे, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया भर की सियाहत का मौका मिला।
1: इंशा जी की सबसे बड़ी खासियत उनका वो मुनफरिद लहजा था, जिसमें तंज व मजाक के साथ साथ एक गहरी मिठास भी थी। उन्होंने रिवायती गज़ल को एक नया रंग दिया, जहां वो हिंदी और उर्दू के खूबसूरत तालमेल से जादू जगाते थे। उनकी शायरी में पंडित, चांद, जोगी और नगर नगर घूमने वाले मुसाफिर का जिक्र बार बार मिलता है। सुनिए उनकी ये खूबसूरत गज़ल। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा।

दोस्तों, इब्ने इंशा सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक बेमिसाल नसर निगार भी थे। उनके सफरनामे रिवायती नहीं हैं कि हम वहाँ गए और ये देखा, बल्कि उनके सफरनामे तो तंज़ो मज़ाह के शाहकार हैं। आवारा गर्द की डायरी दुनिया गोल है इब्ने बतूता के ताकुब में, और चलते हो तो चीन को चलिए, ये वो किताबें हैं जिन्हें पढ़ते हुए आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं और साथ ही दुनिया भर की सैर भी कर लेते हैं।

उस रोज जो उनको देखा है अब ख्वाब का आलम लगता है, उस रोज जो उनसे बात हुई वो बात भी थी अफसाना क्या, उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें पर छू न सकें, जिसे देख सकें पर छू न सकें, वो दौलत क्या, वो खजाना क्या।

इंशा जी ने बच्चों के लिए भी बहुत खूबसूरत नज़में लिखीं जो आज भी हमारे बचपन की याद ताज़ा करती हैं। ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है।

0: है जो रेत पे तन्हा बैठा है।
1: न इसके पेट में रोटी है, न इसके तन पर कपड़ा है, न इसके सर पर टोपी है, न इसके पैर में जूता है, न इसके पास खिलौनों में कोई भालू है कोई घोड़ा है, न इसका जी बहलाने को कोई लोरी है कोई झूला है, न इसकी जेब में ठेला है, न इसके हाथ में पैसा है, न इसके अम्मी अब्बू हैं, न इसकी आपा खाला हैं।
0: ये सारे जग में तन्हा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। हम जिस आदम के बेटे हैं, ये उस आदम का बेटा है। ये आदम एक ही आदम है, ये गोरा है या काला है, ये धरती एक ही धरती है, ये दुनिया एक ही दुनिया है। सब एक दाता के बंदे हैं, सब बंदों का एक दाता है। कुछ पूरब पश्चिम फर्क नहीं, इस धरती पर हक सबका है।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सबको हंसाने वाले इब्ने इंशा को ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कैंसर जैसे जानलेवा मरज ने आ घेरा। इलाज के लिए वो लंदन गए, लेकिन वहाँ की तन्हाई और बीमारी ने उनकी शायरी को एक नहायत दर्दनाक मोड़ दे दिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी आखिरी और सबसे मशहूर गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो ये लिखी, तो उसके कुछ ही दिनों बाद सचमुच उन्होंने इस दुनिया से कूच कर दिया।

0: 11 जनवरी 1978 को लंदन के एक अस्पताल में उर्दू अदब का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया और उन्हें वहीं लंदन में सुपुर्दे खाक किया गया। इब्ने इंशा रुखसत हो गए मगर हमें हंसने का करीना और रोने का सलीका सिखा गए। जब भी उर्दू दुनिया में सच्चे और मुखलिस शायरों का नाम लिया जाएगा इंशा जी सफ़े अव्वल में खड़े नजर आएंगे।
1: सामईन, आज के प्रोग्राम नगमगी में इब्ने इंशा की यादों के साथ बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को दें इजाज़त। आदाब।
2: अभी सामईन समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले मोहम्मद इस्लाम की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे मोहम्मद इस्लाम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर बाबला मेहता की आवाज़ में ये गीत फिल्म चांदनी से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत शिव हरि का।

चांदनी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शिवहरी ने। अब आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत। आवाज़ है एसपी बाला सुब्रमण्यम की। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था, संगीत राम लक्ष्मण का।

दिल है कि मानता नहीं, ये फिल्म का नाम है जिसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है समीर ने।

अब आइए सुनते हैं जिस्म फिल्म का ये गीत। आवाज़ है श्रेया घोषाल और शान की। इस गीत को लिखा नीलेश मिश्रा ने, संगीत MM क्रीम का।

अब आइए सुनते हैं साया फिल्म का ये गीत। आवाज़ है उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत अनु मलिक का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झंकार। इस कार्यक्रम में अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलजार का लिखा ये गीत शंकर एहसान लाए के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है राजी। आवाज़ अरिजीत सिंह, मणि महादेवन और साथियों की।

अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है फिल्म रिफ्यूजी से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का।

जावेद अख्तर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। आवाज़ सोनू निगम और अलका याग्निक की थी। और अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं झंकार फिल्म में, झंकार कार्यक्रम में। ये गीत है फिल्म ताल से, आवाज़ है उदित नारायण, अलका याग्निक की।

0: Akashvani at 90.
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: अपनी आजादी भी ऐसा सारी दुनिया कहती है, तब मैं कहूंगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका फरमाइशी ईमेल पर आधारित हमारा कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। नमस्कार।

तो ये ईमेल पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं और बता देते हैं आपको कि आज ये तीसरी कसम फिल्म का गीत सुनना चाहा है जिन श्रोताओं ने, वो हैं गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार। साथ में हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावल से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। तहसील रोड गंज डुंडवारा से हैं के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील। साथ में है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन। भरपड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। सोनवर्षा खानपुर से है ये चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर। धानोरा वटाली तहसील नांदुरा जिला बुलडाड़ा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल और सचिन पाटिल। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजिता जोशी और दुर्गा कुमारी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू। बाघमुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञान नंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। साथ में है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा और धरारा बजड़िया वाराणसी से एनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इससे राजुद्दीन अंसारी, एजाजुर रहमान अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और इकबाल अंसारी के साथ साथ श्रवण कुमार। आपने सुनना चाहा है तीसरी कसम फिल्म का ये गीत जिसमें आवाजें हैं मन्ना डे और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और संगीत शंकर जयकिशन का। तो आइए सुन लेते हैं इस गीत को।

0: पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम। अब आपको बताते हैं कि अगली फरमाइश आई है परवरिश फिल्म के लिए। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र की आवाजों में गाया ये गीत, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सुनना चाहते हैं आप सब श्रोता। जमानिया जिला गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल। साथ में देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल जमानिया रेलवे स्टेशन से, एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल और आशुतोष जायसवाल। और इसी गीत के लिए फरमाइश की है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना दिव्या भारती ने। डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी और रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से हैं पप्पी यादव, ललितचंद यादव, बबलू यादव और सुनील यादव। साथ में लवकोश यादव। रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता जी। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह। पानीपत हरियाणा से हैं अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल। साथ में हैं अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी दीवाना, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार।

तालुका पंढरपुर से हैं जाकिल मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज़ मुलाड़ी और दिलशाद मुलाड़ी। साथ में हैं नसीर मुलाड़ी, चाचा चाची और सारा मुलाड़ी परिवार। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा, ज्ञानभूषण शर्मा। और बेवरा संबलपुर छत्तीसगढ़ से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा और तुषार वर्मा के साथ वशिका वर्मा। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन

राजे जाधव और ग्राम चरौदा बाजार नवापारा जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबुई और साथ में हैं ज्योति ठाकुर। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। राम रतन टॉकीज गुलवाड़ी से हैं गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं वसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और बड़ी बहू रिमी तनुश्री गुप्ता।

नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से हैं बुनकर आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो और मनीषा बानो। गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया।

चंद्रानगर अंबाला से हैं कृष्णा कुमारी, बीना कुमारी, सोनाली और डोली कुमारी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरमान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी लोग। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कृष्टि पटवा। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खां, इस्लामुनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान, बेबी नुसरा खान। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहूं जिला जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम। अनई जिला बनारस से है मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत परवरिश फिल्म से।

वाराणसी केंद्र के साथ। अब आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें हैं इस गीत में। एस एच बिहारी ने इसे लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और पसंद आप सबकी। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश के साथ साथ आसिफ शेख। खदान कोठी बोरोपारा चौक बिसवेरिया वेस्ट बंगाल से हैं मुन्नी देवी शाह और जयप्रकाश साव, साथ में हैं बसंत लाल साव जी। डाक व गांव निजामदाबाद जिंद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और ममता अरोड़ा।

रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से हैं पप्पी यादव, ललित चंद यादव, बबलू यादव, सुनील यादव और लवकुश यादव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तेलंगाना मुंगेर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, राघव कुमार, आशा देवी और भानुप्रिया। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसबीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभ्रचंद बजाज और साहिल बजाज के साथ साथ बिट्टा बजाज। अहमदनगर बजरडीहा से हैं बदरुद्दीन अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी। ग्राम कुंडाला तारा पोस्ट लाल रोड स्टेशन, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं रतिनाथ त्रिपाठी, राखी, आर्या, इंद्री, ओमनाथ, सारंग, शिवांग, रोली, अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं पंजाब राम टेके। संभव है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल पंजाब से हैं, राम टेके यशोधरा और साथ में हैं श्रव्या राम टेके। बटिंडा रोड डबल वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तान्या नारंग। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से हैं जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, बबलू तिवारी, रामनिवास सिंह कुशवाहा। शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से हैं राजेश खोबड़ खेरे, शिव सागर खोबड़ खेरे, इंदिरा ताई खोबड़ खेरे, सुनैना, दीपाली, स्वराज और तनुज। बिहारीपुरम वीरम गांव से हैं जयशंकर तामोरिया, अजीता और प्रेम तामोरिया। पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, जानकी साहू। रवि रेजिडेंसी राजकोट से हैं हेमंत जाटव, सुधा कुमारी और संध्या कुमारी। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हैं सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। रघुवीर नगर दिल्ली से हैं जफर मुअज्जन शेख जी हैं, साथ में हैं फलक नाज बेबी अलिस्बा शेख। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। इंदिरा बिहारी दिल्ली से हैं बेबी अंसारी, निशा डब्लू अंसारी, जूही परी अंसारी।

गम्हरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से हैं मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार, संजय बामुनिया, माया कान्हा और कृष्णा हैं बोरना आदलपुर गुंगावा से, पद्मा टॉकीज नेफानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, सिद्धि बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं किशोर वर्तरकर, शुभम वर्तरकर और पुन्नू वर्तरकर, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने,

अभिनय प्रसिद्धि और महेश राम टेके के साथ साथ प्रतिभा गोंडाने। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धीरेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। हालौद बाजार लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी। आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत एसएच बिहारी का लिखा हुआ फिल्म है प्यार झुकता नहीं।

पानी टंकी परेवा जौनपुर से हैं रॉकी बम बम माना और रिंकू। सदर बाजार मारवा।

सतीश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे। अडार नादगांव नांद घाट छत्तीसगढ़ से, अडार नादगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। सदर बाजार मारवाड़ बिडाला राजस्थान से हैं रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। कासम कॉलोनी सनावत से हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और आसिफ मीना। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजीता, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा। सुनील जैन, रंजन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और आपके मम्मी पापा। उदयपुर से हैं रमेश नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिला नाचानी। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं आशा फिल्म के इस गीत को।

और कार्यक्रम का अगला गीत है खामोशी फिल्म से ए हरिहरन अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना और जतिन ललित का संगीत है और पसंद आप सब श्रोताओं की। अस्तूतपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदर और पांडुरंग कुम्हार। वार्ड नंबर एक पोफाली से हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर, अर्पिता जी। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। भानबेड़ा मंगलवाल से हेमंत पटौदी, उमंग पटौदी, मोक्ष पटौदी और भरतराम पटौदी के साथ साथ जयंत पटौदी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललित खर्चे, गणेश खर्चे, कीर्तिका खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। बाजार रोड मुंगेसापुर से

साबिस्ता, पलक, लुबीना और यश मंसूरी। पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धानशी बुरांडे। बल्हार शाह से हैं सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े।

गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, बीना मस्किन चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। तो आप सबकी फरमाइश पर खामोशी फिल्म का ये गीत।

आइए हम आपको सुना दें हीरो फिल्म का ये गीत। रेशमा की आवाज, आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फरमाइश आप सब श्रोताओं की। दिल्ली नानगई लोई से हैं राजेश जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा जटोलिया, पूजा जटोलिया, कोमल जटोलिया और आरव जटोलिया। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ग्राम भोईना पर लाटाबोड़ जिला बालौ छत्तीसगढ़ से हैं देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू और उमाबाई के साथ गंगाराम साहू। वृंदावन कॉलोनी माहेश्वर से हैं दीपक गुप्ता, सुनीता, विवेक, निशी और आशुतोष। ग्राम लसुड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद्र वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डागी। कस्बा बिड़ाला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल और प्रियंका। साथ में हैं बीजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरमीत राहुल और गुरशब्द राहुल। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हैं श्री त्रिभुवननाथ मालवी, अनमोल मालवी, श्लोक मालवी और समस्त मालवी परिवार। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं तारा देवी विश्वकर्मा, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। इंदिरा चौक दिल्ली से हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र के साथ साथ रौनक सेन। पूना जंक्शन मस्तानापुर से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़ और साई गायकवाड़। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी। अहमदनगर बजरडीहा से हैं बदरुद्दीन अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी। तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान, फरहान और समाहिरा के साथ अजीम और गुड़िया। बटिंडा रोड मड़ी डबलवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। तो हीरो फिल्म का ये गीत आप सब सुने, आप सबकी फरमाइश पर।

रेशमा की आवाज में गाए इस गीत को सुनते रहिए और आज यहीं अपनी रेडियो सखी किरण सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। अब आइए सुने कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश

0: जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
1: जी,
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
1: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
1: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
1: जी
0: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।

0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में

0: हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से

0: पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है? हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं।

0: वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हां मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। थोड़ी देर में सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
0: आइए सुनिए सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं चंद्रा रानी। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में आइए सुनिए ये गजल, रचना बशीर बद्र की।

मैं कब तन्हा हुआ था याद नहीं। अभी आप सुन रहे थे बशीर बद्र की लिखी ये गजल, आवाज चंद्रा रानी की थी। और इस कार्यक्रम के आखिर में बशीर बद्र की लिखी एक और गजल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, आवाज चंद्रा रानी की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थी चंद्रा रानी। इनकी गाई चंद गजलों का आनंद आप इसी कार्यक्रम में रात 8 बजे भी ले सकते हैं। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं कुमार सारंग चौधरी। आप संतूर पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनिए संतूर वादन। कलाकार हैं कुमार सारंग चौधरी, राग है शुद्ध सारंग।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संतूर वादन। कलाकार थे कुमार सारंग चौधरी। राग था शुद्ध सारंग। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के 3 पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है।

और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों के बाद एक बार फिर से आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब आइए हम आपको दे देते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना और कार्यक्रम विवरण में जानकारी आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आपको दे देते हैं सूचना। ये पहली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार रीता देवी पत्नी उदल यादव निवासी हैं, ग्राम नीबूपुर पोर्ट साहूपुर जिला अलीनगर जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश की। रीता देवी की उम्र है 41 साल, लंबाई लगभग 4 फुट 10 इंच के करीब, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये 20 मई सन 2026 दिन में 11 बजे से लापता हैं। इनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और घटना वाले दिन आपका पहनावा मैरून रंग की साड़ी थी। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो कृपया कर अपने नज़दीकी थाना या थाना अली नगर जनपद चंदौली को सूचना दे सकते हैं। एक नंबर है, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। नंबर है 9140871397, यानी 9140871397। और ये अगली सूचना भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार सितारा बानो पत्नी कलाम निवासी ग्राम रेवसा पोस जनसो की मड़ई थाना अली नगर जिला चंदौली है। सितारा बानो की उम्र है 25 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंगोरा और चेहरा लंबा है। ये 30 मई 2026 सुबह 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकली थी, लौटकर नहीं आई। घटना वाले दिन आपका पहनावा हरे रंग की सलवार कमीज और नकाब था। यदि आपके संबंध में कोई भी सूचना आपको मिले तो कृपया कर अपने नज़दीकी थाना या थाना अलीनगर जिला चंदौली को सूचना देने का कष्ट करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यही संपन्न होती है कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। आइए हम आपको दे दें संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला सुनिएगा रात 8:10 पर। आज आप सुनेंगे इसकी 11वीं कड़ी। शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा शहनाई वादन। कलाकार होंगे पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी। आपकी फरमाइश पूरी होगी आपकी पसंद कार्यक्रम में, जिसे हम लेकर आपकी सेवा में आएंगे रात 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर और कहकशा दिन में 2:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा के साथ साथ सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत। विषय होगा तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव। इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर अरुण कुमार यादव से। अलावा इसके सुनिएगा मोहम्मद इस्लाम का गाया लोकगीत भी। इनके गाए लोकगीतों का आनंद आप दिन में 1:45 पर भी ले सकते हैं। शाम 5:15 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, जिसमें मेरी पसंद

0: यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, सूचना और जानकारी भी। शाम 5 बजे सुनेगा कार्यक्रम धरती के गीत, इसमें आज सुनेगा अवधि गीत, कलाकार होंगी मालिनी अवस्थी। संस्कृत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे, और अब से थोड़ी देर बाद यानी दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम होगा अंगनैया, जिसमें बहनें सुनेंगी चर्चा गीत, संगीत, साथ ही बातचीत। महिलाओं में गर्भाधारण की समस्या और गर्भ संस्कार का आध्यात्मिक व चिकित्सीय दृष्टिकोण, इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर अनीता चौधरी से शिखा श्रीवास्तव की। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। दिन के 1:10 होने वाले हैं इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के क़त नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए। इस मौके पर नई दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के आवाम ने देखा है कि जब कोई हुकूमत सही नीयत के साथ चलती है तो तरक्की भी तेज़ी से होती है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है।
2: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: इससे कबल मरकजी काबीना ने भी कल एक करारदाद पास करके वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत करने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म के पार्लियामानी हल्के वाराणसी में हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर पेश है एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: रियासती इलेक्शन कमीशन ने कल 3 सतही पंचायत इंतखाबात की हतमी वोटर लिस्ट शाया कर दी। रियासत में कुल 29.01 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। इसके साथ अब वोटरों की कुल तादाद 12.58 करोड़ हो गई है, जबकि 2.03 करोड़ नामों को हजफ किया गया है। वोटरों में इजाफे के मामले में बलिया रियासत में पहले नंबर पर रहा, जहां 1,60,376 वोटरों का इजाफा हुआ है। इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया के दरमियान कल एक अहम मीटिंग हुई। इन्वेस्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर निवृत्ति राय की मौजूदगी में मुनक्किदा इस आला सतही मीटिंग में रियासत में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करने और दोनों तंजीमों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने पर तफसील

0: बातचीत की गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने और सहूलत फराहम करने के लिए मुश्तरक हिकमत अमलियों पर खसूसी तबादला ख्याल किया गया। फुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। यह फीफा वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है। इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले के एडिशन में 32 टीमें शामिल होती थीं। मुकाबले में मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 72 ग्रुप मरहले के और 32 नॉकआउट मैचेस शामिल हैं। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। रियासत के गोरखपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, संभल और पीलीभीत समेत कई जिलों में गुज़िश्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ मकामात पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने आज और कल कुछ मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन तेज की। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनावली सब बहनी लोगन के नमस्ते और लाजो तो हूँ के नमस्ते और इधरियाँ आ जाओ।
1: कहे नहीं दीदी, देखा कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के हमार भी नमस्ते। हम साथ में मुनक्का दीदी तो के भी नमस्ते।
0: लाजो हो देखा आज तो मेहरा के मत बोला काहे से दऊ आज सबकर सुन ले ले हुआ तनी से दऊ नरमा गल हुआ तू काहे मेहरायल हो।
1: नहीं दीदी मेहरायल नहीं, देखा दऊ का असर तो सबके ऊपर भइला है और साथ में मौसम इतना अच्छा हो गल हो कि शरीर में फरहरी आ गल हो।
0: बिल्कुल, और कितना अच्छा लगा था देखा मौसम तो है भाई एकर जौन है कि उतार चढ़ाव तो लगर रही तब मनई के भी मौसम के हिसाब से भी हमेशा तैयार रहे के चाहिए। चाहे देखा मौसम का बात कइल जाए लाजो आ चाहे फिर अपनी जिंदगी का बात कइल जाए, है ना।
1: एकदम दीदी, देखा जिंदगी के बात करत है तो देखा पहले का समय कुछ और रहल, अब का समय कुछ और हो। धीरे धीरे समय में बदलाव भेल, लोग बदलन, रोक का सोच बदलल, देश विकास कैलस। लेकिन देखा दीदी यही में जो अपन आए वाला नई पीढ़ी हो या आ चुकल हो, उस लोग के जीवन में भी इस बदलाव के विकास के साथ साथ कई ढेर सारी चुनौती भी आयल जेकर उनके सामना करे के पड़त हो। तो देखा सबसे बड़ा चुनौती तो देखा आजकल घरे में सबकरे घरे में एक बड़का वाला मोबाइल हो गल हो, इंटरनेट हो गल हो, इस सबसे सबसे बड़ा चुनौती हो।
0: देखा लाजो बात तू कहलू है चुनौती का तो देखा ये चुनौती नहीं है, ये तो नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा अवसर कहल जात हो कि बस क्षण भर में उनके कौनो तरह का जानकारी मिल जात हो, खाली बस आपन अंगुरी फिरा देत हुए जौन तू कहत बड़का मोबाइल का, है ना। लेकिन देखा जौन चुनौती का हम लोग बात करत है ना तो कोई भी समस्या हो उ चुनौती नहीं होला अगर ओके तू आगे बढ़ के अपना ला, है ना। देखा भाई नई पीढ़ी का बात करत है जा तो तू नई पीढ़ी में बाटू और लोगन नई पीढ़ी में बाटन हमारे मुकाबले में तो तू नई पीढ़ी का हऊ लाजो। तो देखा नई पीढ़ी जवन है ना सबसे बड़ी बात उनके सामने ई हो कि उनके अपने भविष्य का बड़ा चिंता हो, है ना। अब भविष्य के चिंता के लेकर के वो अपन जौन आज का दिन है ओके पता नहीं कहे खराब करल चाहत
1: हूँ, देखा सोच ले जाते हैं
0: बिल्कुल सोचे में मग एकदम जौन है कि एकदम बिजी बाड़न घरे परिवार में लगमय बैठल हुआ दादी के दादा के या माई बाऊ के तो उनके पास समय नहीं है एकदम।

0: व्यस्त हूँ। देखा, बहुत सारी समस्या का समाधान हमरे अपने परिवार में हो। वहाँ
1: हाँ
0: अपन बात करें भाई, तुमसे पहले भी जौन माई बहू रहना, तुहार जौन आगे जौन पिछली पीढ़ी बाय, वो भी
1: हाँ
0: तो कैसे अपन समस्या का समाधान कह के तुहके जौन है कि ए लायक बनेलस। तो देखा, चुनौती तो अबे करी है ना,
1: एकदम
0: लेकिन
1: दीदी
0: ओकर सामना करे के लिए हमेशा तुहके सतर्क
1: तैयार,
0: रहे के हुई, सजग रहे के हुई।
1: एकदम दीदी। आ देखा पढ़ाई लिखाई का बात करत रहलू, तो देखा अपन जो नई पीढ़ी हो वो पढ़ाई लिखाई तो करत हैं, अब मोबाइल में कहलू तो देखा मोबाइल में देख के तो हर चीज़ का जानकारी बहुत जल्दी मिल जाता हो, पढ़ाई
0: हाँ
1: लिखाई
0: हाँ
1: खातिर बहुत बढ़िया हो। लेकिन देखा उनके सामने पढ़ाई लिखाई के लेके भी तो उनके भविष्य का चिंता हो जाता हो, जब वो पढ़ लिख लेते हैं तो देखा उनके सामने ये चुनौती आवत हो कि वो पढ़ लिख के आगे का करें, आगे शहर जाके पढ़ाई शुरू करें, नौकरी करें, या गाँव में ही रह के अपने माई बाबू के साथ खेती में आगे बढ़ें। तो देखा जब उस नौकरी बदे तैयारी करत हैं तो देखा सीट तो बहुत कम हो, लेकिन रोजगार पाए वाले लोग का संख्या तो बहुत ज़्यादा हो, जैसे उनके मन में अलग तरह का डर पैदा हो जाता हो। और अगर वो खेती में आगे बढ़त हैं तो देखा उनमें भी उनके लगत हो कि पहले जैसन मुनाफा ना रह गल हो, ये सब तरह का चिंता उनके मन के देखा भटकावत हो। तो इनमें चाहिए कि उनकर जो माई बाबू हन वो उनके समर्थन करें, सपोर्ट करें।
0: देखा हो लाजो, तू बात तो बड़ी जौन है कि सोचे वाली कैलू, सही बात है ना। अवसर कम हो, लेकिन यही में कहल गया कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात। अगर जेके मतलब आपन आगे बढ़े के हो, तो वो देखा शुरुआत बस करे के जरूरत हो। देखा, 1 रुपया से 100 रुपया, 100 से 1000 होला लाजो। वैसे ही काम कोनो छोट नहीं हो, तो काम करे के जरूरत जरूरी ना है कि बहुत मतलब अपने के इतना तू झोंकदा पढ़ाई में कि फिर और काम पीछे छूट जाए। काम देखा, यही से तो सरकार लोगन के रोजगार देवे खातिर उनके प्रशिक्षण देत हो, ताकि उनके अंदर जौन हुनर है, जौन गुण सहूर हो, वो कौशल है, ओके निखार के बढ़िया बनावल जा सके। अगर उनकर पुश्तैनी कोनो रोजगार है, ओके वो आगे बढ़ावल चाहत हुअन, ओके अपने आर्थिक जौन है कि कमाई का जरिया बनावल चाहत हुअन, तो उनके लिए रोजगार देत है ना।
1: एकदम
0: कुछ
1: दीदी
0: जैसन जैसन उनकर मतलब गुण सौर है, वैसन उनके रोजगार मिलत है, और वैसन उनके प्रशिक्षण दिहल जात है। आ एकरे साथे लाजो, उनके जौन प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो हर जगह मान्य हो। तो बस
1: एकदम
0: जरूरत है
1: दीदी
0: अपने हुनर के पहचाना, अपने कौशल के पहचाना, और प्रशिक्षण ला और आगे बढ़ा।
1: एकदम दीदी। देखा कौशल विकास योजना का बात कह लो तो देखा दीदी जे भी भैया लोगन या बहनी लोगन आपन पढ़ाई बीच में छोड़ देवत हैं उन लोगन खातिर तो और भी अच्छा हो, एमए उनके फ्री में प्रशिक्षण दिहल जात हो, जैसे वो अपन जो भी उनके अंदर हुनर हो ओकर सर्टिफिकेट मिल सकल उनके।
0: बिल्कुल, तो लें आगे बढ़ें,
1: एकदम
0: और
1: दीदी
0: अब जौन है कि अपने के आर्थिक स्थिति के बरियार बनावें, और अपने संगे संगे अपने आस पड़ोस में भी 2-4 लोगन के भी रोजगार दें, उनकर भी परिवार का आर्थिक दशा बढ़िया सुधरा। बतकही करल जाई
1: हाँ
0: लाजो वहीं, और बढ़िया से बतकही ले के भी आया ले जा, जानकारी से भरल हाई। एक और जानकारी है संदेश के रूप में, बहिन लोगन सुन ले।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227658।
7: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
7: 0542227658।
8: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: लाजो सनीस होगल, एक कहानी तू सुन ले हो, अभिमन्यु का नाम सुन ले हो।
1: हाँ हाँ।
0: अभिमन्यु कितना जवन है कि तेज तर्रार रहा, कितना योग्य रहा, इतना नाम सुन ले हो।
1: हाँ
0: उनके जवन ज्ञान रहा वो कहाँ से मिलल रहा?
1: देखा दीदी, वो जब अपने माई के गर्भ में रहना ना, तब से उनके ज्ञान में रहता
0: है। देखा, मतलब कि पता हो तब वही देखा बात कहल गया हो कि भाई जब बच्चा गर्भ में होना ना, अगर ये सब बातन का ध्यान दिहल जाए, अच्छी अच्छी बात बतियावल जाए, है ना, माहौल खुशनुमा रहा, तो ओकर सीधा जौन है कि असर बच्चन के संस्कार पर, बच्चन के शिक्षा पर, जब वो धरती पर नहीं ऐतन महतारी के गर्भ में रहा ना, तब वैसे जौन है कि उनके मिला लगा ला, है ना। और ई तो हमहन के जौन है कि बहुत पहले से सुनत आवत जा कहानी के माध्यम से, है ना। लेकिन देखा आज अपने कार्यक्रम में भी हम लोग बतकही भी यही से जुड़ल लेके आयल है जा कि महिला लोगन में गर्भ धारण का समस्या और गर्भ संस्कार का आध्यात्मिक और चिकित्सकीय रूप से का महत्व है, ए विषय पर डॉक्टर अनीता चौधरी से बतियावत हैं शिखा श्रीवास्तव बहिन। बहिन लोगन ये बात कही सुने
1: सुने।
9: श्रोता बनी, महतारी बने का जौन सुख होला उस सब महिला के चाहेला, लेकिन आजकल का जौन जीवन शैली है, तनाव है, खान पान है, वो ऐसा हो गए है कि गर्भ धारण में समस्या आवत है। एकरे साथे साथे पहने लोगन आपके इहो जानकारी देवे के है कि गर्भ संस्कार का होला, काही जरूरी है गर्भ संस्कार करावल, एकर का आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और का चिकित्सा का दृष्टिकोण है। तो यही कुल विषय पर बतकही साझा करे बदे हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित कैले ही डॉक्टर अनीता चौधरी जी के स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आप लोगन के जानकारी दी है इकुल विषय पर। तो डॉक्टर बहने, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
10: धन्यवाद।
9: अच्छा, आप बहने लोगन की ई बताई कि आजकल जो उन गर्भधारण का समस्या होता वो काही होता बहने लोगन, मेकर का कारण?
10: तनाव जीवन में सबके इतना ज्यादा हो गया है और सबको बहुत संशय होने लगा है, क्या मेरे से ये हो पाएगा, तो मन में जो चलता है वही प्रतिफुलित होता है। तो जैसे हमारे थॉट्स रहेंगे, जैसे हमारे विचार रहेंगे, वही होने लगता है। जब खुद को डाउट होगा, अरे मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी क्या, मेरी डिलीवरी हो पाएगी क्या, नॉर्मल हो पाएगी क्या, तो शुरू से अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मन में इतना भय आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और फिर दूसरा है खान पान, कोई भी कुछ भी खा ले रहा है, कभी भी खा ले रहा है। देखिए, पुराने जमाने में एक टाइम होता था कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, दो वक्त का भोजन होता था। अभी तो कोनो गिनती ही नहीं बची है, जब देखो तबे आदमी कुछ ना कुछ उठा के खा ले रहा है। और सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष का भी उसमें सहभाग्यता है। देखिए, बीज तो पुरुष से ही आएगा, महिला के जो बच्चेदानी है, ओवरीज है, वो एक धरती की तरह मानिए, और जो बीज बोया जाएगा वो पति के स्पर्म के द्वारा होगा, तो दोनों का जरूरी है। पुरुष नशा कर रहे हैं, कई तरीके के नशे चल रहे हैं, और नशा आजकल इतना ज्यादा एक प्रॉब्लम हो गया समाज में, जिसके चलते एक बड़ी समस्या हो गई है। और जब पुरुष नशे में रहता है तो औरत को उसकी अलग टेंशन रहती, तो मिला जुला के ये एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस है, नशा है, भोजन है, जीवन शैली है, टाइम पे नहीं उठना, टाइम पे सोना नहीं, तो सब कुछ तो उथल पुथल हो गया है। और प्रकृति तो यदि आप देखें, जानवर टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, चिड़िया भी टाइम पे सोती है, टाइम पे उठती है, लेकिन हम लोगों का क्या है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। ऐसे खान पान का है, पुराने जमाने में तो सूर्यास्त के बाद कोई खाता ही नहीं था, तो अभी भी ये है कि यदि आप बाद में खा रहे हैं तो वो हम खाना से ठूस रहे हैं, वो हमारे शरीर में अब्सॉर्प्शन उतना नहीं होता है।
9: माने समय पे रहल बहुत जरूरी है, दिनचर्या के नियमित कई बहुत जरूरी।
10: और ये मैं तो कहूंगी पिछले 20 साल में ज्यादा गड़बड़ हुआ है, जब से ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है, तो हमें वापस उसी शैली में जाना पड़ेगा जो हम गांव में पहले जीते थे।
9: लेकिन बताई ना कि अब आजकल तो इतना भाग दौड़ का जिंदगी, हम पुराने शैली में जाके जी भी तो नहीं सकती, इतना काम है कि मैंने काम के हिसाब से अपने दिनचर्या के बना ले ले है।
10: हाँ देखिए, पहले एक पुरुष घर में काम करता था, सारा परिवार बैठ के खाता था, लेकिन अभी घर में खर्चे देखो, मोबाइल पैसे का आया हर महीने, ये तो वो गाय है जो दूध भी नहीं देती है, 20-20 हजार का मोबाइल आ रहा है, उतने में तो एक गाय खरीद लाते, दूध तो देती। तो खर्चे इस तरह के सोशल मीडिया को देख देख के ना, बहुत हमारी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। अब तो सबके अलमारियां भरी हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, और जब बाहर जाना तो कहेंगे कपड़ा ही नहीं है। तो हमें प्रकृति से सब कुछ चाहिए, लेकिन यदि हम उस प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे हर चीज पे फर्क पड़ेगा, चाहे हमारी प्रेगनेंसी हो, चाहे हमारे डिलीवरीज का हो। डिलीवरीज का देखिए

0: पिछले कुछ सालों में क्या सिजेरियन इतना ज्यादा बढ़ गए, लेकिन मैं कहूंगी कि महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, दर्द होगा, दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और कुछ एक तो आके कहती हैं जब दवाइयां हैं दर्द नहीं बर्दाश्त करना तो क्यों नहीं आप कर देती हैं, तो ऑपरेशंस का इतना बढ़ गया। और ऑपरेशन से जो संतान हो रहा है उसमें भी चैलेंजेस तो है ही है, देखिए जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक ही रहेगा।
1: अच्छा, हमन गर्भ धारण की समस्या का बात कर रही थी, तो यही क्रम में जो उन गर्भ संस्कार का हम चर्चा कर ले रही कि ये विषय पर भी जानकारी साझा करो, तो गर्भ संस्कार से आप जुड़े रहें, आपके यही विषय पर आप कार्य कर रही, तो एक बारे में बहनी लोगन के बताई कि ये का होला और ये जरूरी का है।
0: लेकिन बच्चा सीखना स्टार्ट करता है जिस दिन वो गर्भ में आता है, उसी दिन से 20 हफ्ते का बच्चा सब सुन सकता है। तो घर में जो भी वार्तालाप हो रहा है वो बच्चा सुन रहा है और वो माँ की आवाज पहचानने लगता है 20 हफ्ते पे। और यदि बच्चे के जो पिता हैं वो वार्तालाप करते हैं बच्चे से, जिसको हम गर्भ संवाद कहते हैं, तो बच्चा अपने पापा की आवाज भी 23 हफ्ते पे पहचानने लगता है। और जब गर्भ 32 हफ्ते का होता है उसके बाद आखिर के 10 हफ्ते में वो हर शब्द सुन सकता है, समझ भी सकता है और भावनाएं भी समझ सकता है। यदि पति आया है ऑफिस से, गुस्सा है, नाराज है, वो बच्चे को लगता है मेरे चलते मेरे माँ बाप में अनबन हो रही है, तो वो हर चीज के लिए अपने आप को दोषी बनाता है। तो बहुत जरूरी है कि जो पिता हैं, जो ससुराल वाले हैं, जो मायके वाले हैं, जो यार दोस्त हैं, सब एक अनुकूल माहौल बनाए ताकि वो बच्चा जो पल रहा है उसको ये संस्कार मिले। बच्चा कैसा है, सीसीटीवी कैमरा तो आजकल सब समझ रहे हैं, तो उस कैमरे की तरह वो सब देख रहा है, सीख रहा है, आंखों से नहीं वो मन से सब देख रहा है, कानों से सब सुन रहा है, हर चीज की वो प्रतिक्रिया करता है। अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो उसमें ये देखा गया, यदि बहुत चिल्ला चिल्ली होता है तो बच्चा ना डर के कोने में सिकुड़ जाता है।
1: अच्छा।
0: और यदि अच्छा म्यूजिक बजाएं तो बच्चा गर्भ में भी नाचता है। तो इतना सुंदर, अभी तो हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स हैं कि बच्चा अंदर सुन रहा है। तो क्या वार्तालाप की जा रही है, महिला क्या सोच रही है, एक एक चीज का बच्चे के मन पे फर्क पड़ता है। और ये हो सकता है आज ना पता लगे, जब बच्चा 70 साल का होगा तब उसका कोई इमोशन होगा, कोई उसका डर हो सकता है जो तब भी दिख सकता है। वो आया कहां से, और देखिए आप कैसे समझेंगे, ये हम 2-3 बहन भाई होते हैं, सब अलग अलग क्यों हैं, सबको माँ बाप ने वही चीज खिलाई, उसी स्कूल में भेजा, वही बताया झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लेकिन सब अलग क्यों हुए? क्योंकि उनकी 9 महीने की जो यात्रा गर्भ में थी वो इन हर भाई की अलग अलग थी। तो मैं ऐसी आज क्यों हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी जो थी जब मैं गर्भ में थी, मेरी माँ के साथ क्या हो रहा था, मेरे पापा फौजी थे, तो उस वातावरण से वो मेरे में आज रिफ्लेक्ट करता है। तो सिर्फ मेरे में नहीं, ये सब में करता है। तो इसलिए हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए कि किस तरह का वातावरण हम महिला को दे रहे हैं।
1: पुराने संस्कार का,
0: यही गर्भ संस्कार है। पुराने जमाने में तो क्या होता था, और ये सिखाया नहीं जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी आता था। तो महिला कैसे खाएगी, कैसे बैठेगी, कैसे सोएगी, हर चीज का वो था। कोई दुखद समाचार हो तो सडनली उसको नहीं बताया जाता था। तो ये कान कोई नई चीज नहीं है, अभी नए पैकेट में पैक होके आ रही है गर्भ संस्कार के नाम से, लेकिन ये तो पद्धति मतलब सदियों से चला आ रहा है।
1: अच्छा, अध्यात्म से एकर का जुड़ाव,
0: देखिए मन यदि शांत रहेगा तो बच्चा भी वैसा ही होगा। पहले देखो कितने ऋषि मुनि पैदा होते थे, अब क्यों नहीं हो रहे? तो जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, आप कैसी पिक्चर्स देख रही हैं, तो ये सब, और इतना ज्यादा वायलेंस, आप समाचार देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो बच्चे का हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो यदि आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, यदि आप सितार वादन सुनते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे पे बहुत अच्छा पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मदर संगीत सुन रही है तो उसका बच्चा संगीतकार ही बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसपे मन में जो शांति आएगी, जीवन में जब उसको चैलेंजेस आएंगे तब इस बच्चे को मालूम होगा कि मैं कैसे शांतिपूर्वक इन चीजों का हल निकाल के और आगे बढ़ूं।
1: माने उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाए कि वो जीवन में कोई भी समस्या का समाधान कह सकेले।
0: जी एकदम।
1: अच्छा, बहुत नीक लगा था आपसे बतियावत का, चिकित्सा के दृष्टिकोण से काहे जरूरी है ये गर्भ संस्कार?
0: चिकित्सा, देखिए अब तो हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है, हम बहुत सारे अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसमें

0: देख लेते हैं, जो मदर्स इरिटेबल होती हैं उनके बच्चों को ऑटिज्म जैसी बीमारी, एडीएचडी बीमारी, कई सारी मनोरोग विशेषज्ञ वाली बीमारियां बच्चों को पैदाश। आजकल के बच्चों को नींद नहीं आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले एक महिला आई थी अपने छोटे बच्चे को लेके, 2 महीने के, बोले मैडम ये सोता ही नहीं, आधे घंटा सोता है फिर 3-4 घंटे जगा रहता है, बल्कि नवजात शिशु तो 21 से 22 घंटा सोता है। तो आजकल के न्यूबॉर्न बच्चों में निद्रा की प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि मदर्स का मन इतना इधर उधर है, कोई सुन नहीं रहा है किसी की, सभी घरों में अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो बहुत एकांत वाली, लोनलीनेस वाला जीवन आजकल चल रहा है। तो सबको घर में एक फैमिली टाइम निकालना पड़ेगा। जो पहले फैमिली होती थी, अब अलग से वो फैमिली टाइम निकालना पड़ता है। रात में मोबाइल बंद करके सोइए, कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल नहीं आ रहा है, एक फोन चालू रहे। जो ये वेव्स हैं, ये भी गर्भाशय को डिस्टर्ब करती है, और इसका हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है। ऐसे जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, कॉर्टिसोल लेवल है, एड्रेनलिन लेवल है, तो जब स्ट्रेस होता है तो ये सब बढ़ते हैं, तब तो देखा गया इनका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पे। तो गर्भ में हम बच्चे को संस्कार दे रहे हैं, पैदा होने के बाद हम उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखा रहे हैं, वो दाल रोटी कमाने के लिए है, लेकिन जो संस्कार है, बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, वो बच्चा देख के सुन के आ रहा है। तो जो आप करेंगी वही आपका बच्चा करेगा। आप झूठ बोले और चाहे कि बच्चा हरिश्चंद्र सत्यवादी हो, ऐसा नहीं होगा। देखिए, हम घर में जो भाषा बोलते हैं वही बच्चा सीखते हैं, इसलिए ना मातृभाषा। तो माता को तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि वो किन शब्दों का प्रयोग कर रही है।
1: बहुत निक लगा था आपसे बतियावत का। अच्छा, ये बताई कि ये जो गर्भ धारण का समस्या ये घड़ी बढ़ल जाता, जिक्रे बारे में भी हम लोगन बात करत रही, तो एक हल का जो कृत्रिम चिकित्सा प्रणाली होके अपनावल एक हल है, वो सही है?
0: देखिए, IVF तो लास्ट ऑल्टरनेटिव है। समस्या क्या हुई, अब लड़कियां हमारी करियर ओरिएंटेड ज्यादा हो गई, और लड़कों को भी ये है कि हम अच्छे से कमाने लगेंगे उसके बाद ही हम, तो बहुत लेट शादियां हो रही हैं। जब लेट शादी हो रही है उसके बाद भी फिर नहीं, अब हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, फिर जाने पहचाने में 2-4 साल निकल जा रहे हैं, फिर कहते हैं अब बच्चा चाहिए, तब समझ में आता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गए, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर्स एज देखते हैं, टेस्ट कराते हैं, और आजकल टेस्ट करे कोनो कोनो तो गड़बड़े निकल ही आएगी, और फिर उसका इलाज चलता है, फिर आजकल कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता नहीं, और हमें हर चीज की गारंटी चाहिए, तो फिर बहुत दुनिया कहते हैं हम IVF ही करा लेते हैं। तो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी चैलेंज है, और ये हैरानी है कि गांव में भी ये प्रॉब्लम आ गई है। मेरे को याद है जब हम कॉलेज में गए तो आबादी पे बात हो रही थी, तो बोले कि इतनी आबादी क्यों है, बोले हिंदुस्तान में लोगों को यही एंटरटेनमेंट है, लेकिन अब एंटरटेनमेंट मोबाइल हो गया, लेकिन खानदान का प्रेशर आता बच्चा चाहिए, तो फिर डॉक्टर और IVF सेंटर्स की ओर भागते हैं। तो यदि टाइम पे शादी हो, और बहुत करियर जरूरी है, लेकिन बहुत डिलेड शादी, थोड़ा यूथ को भी समझना पड़ेगा, हर चीज पैरेलली चल सकती है, लेकिन आज का यूथ एक बार में एक काम करना चाहता है।
1: माने कुल व्यवस्था के सुधारे के हुई, सबके व्यवस्थित हुए के पड़ी, तब ये समस्या से हम निजात पाए।
0: और बच्चा हमारा बाय चॉइस होना चाहिए, हमारी चाहत से, बाय चांस नहीं कि अरे हो गया। आजकल की भाषा में सब कुछ डाउनलोड हो रहा है, तो बच्चा डाउनलोड हो रहा है, तो जैसी जो भावनाएं रहेंगी वैसा ही बच्चा आपके गर्भ में आएगा। तो यदि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत लस्ट के साथ हैं, तो वैसा बच्चा आएगा। यदि आध्यात्मिकता के साथ, पूजा की तरह नहा धो के,
1: बहुत नीक जानकारी आप दे ली। चले चले बहनी लोगन बदे कुछ संदेश,
0: नेचर के साथ रहिए, जो प्राकृतिक चीजें हैं वही इस्तेमाल करिए, अपने प्रकृति का ध्यान रखिए, तो आप भी स्वस्थ रहेंगी। आप कब स्वस्थ रहेंगे, जब आपके आजू बाजू सब स्वस्थ रहेगा। और शब्दों का बहुत तगड़ा प्रभाव है। यदि मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, तो एक कितनी अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन यदि वही हम बोले हैं आई हेट यू, तो तुरंत कैसी भावनाएं होती है। तो हर एक शब्द का बच्चे पर असर पड़ रहा है, आपकी सेहत पर असर पड़ रहा है। तो अच्छा खाएं, अच्छा सोचे, थोड़ा ध्यान साधना करें, तो थोड़ा सा आध्यात्म की ओर चलना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान प्राणायाम योग साधना करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी चीजें थी। तो यदि आपको एक दिव्य बच्चा चाहिए, तो आपको पहले देवी स्वरूप बनना पड़ेगा।
1: क्या बात है, इतना नीक का बात आप कहली ना। डॉक्टर अनीता चौधरी जी, आप हमारे कार्यक्रम में एलिन और महिला लोगन में गर्भ धारण के समस्या से जुड़ल और गर्भ संस्कार के बात से जुड़ल

0: आध्यात्मिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण पर इतना महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर ली। इकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखा दीदी, बड़ा निक बतकही सुनवैलू आ। देखा डॉक्टर बहनी कितना निक फरिया के एकदम जानकारी देली ना, कि देखा जब बच्चा गर्भ में पड़ला तब से उ सुने और समझे लगला। यही से अपने आसपास में और घर में का माहौल हमेशा अच्छा लगे, ताकि वो एक अच्छे माहौल में पले।
2: अरे लाजू, हम तो सुनता रह गईली है हो। हम कही बहन लोगन भी बड़ी मन से सुन ले हुई है कि महिला लोगन में गर्भ धारण का समस्या और गर्भ संस्कार का आध्यात्मिक और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से का महत्व बाय। डॉक्टर अनीता चौधरी से शिखा श्रीवास्तव बहिन कही बत कही बड़ा निक लगल है। और हम कही ना कि अब तो ई होत है कि भाई और मन बढ़िया हो जाए, मन खिल जाए। एकरे बदे लाजो बहिन लोगन के कुछ गीत गमनई कोरी ले चले।
1: जरूर दीदी, तो बहनी लोगन इनके गीत सुने।

0: गीत तऽ तू बड़ा नीक कऽ सुनवैलू हो लाजो।
1: हाँ जी।
0: और कहे के बाद देखाई कि गीत गौनई भी हो गल, नीक कऽ बतकही भी हो गल। और कहे के ई है ना
1: हाँ
0: कि
1: जी।
0: देखा मौसम चलत हौ ये समय गर्मी का, आ ए गर्मी में भी देखा खाए वाली चीज बड़ी अच्छी अच्छी अपने गांव घर में है। आप देखा
1: एकदम
0: जैसे
1: दीदी,
0: दुआरी पर तोहरे जामुन का पेड़ अकेला अकेला खालू।
1: नहीं कहे दीदी, सबके बांट के मिलजुल के खाईला। देखा अपने आसपास में गांव में सबके दिली। आ देखा दीदी, खाईले के साथे साथे में कौन कौन सा विटामिन तत्व पावल जाला, एकर भी जानकारी रखल बहुत जरूरी है।

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखा है, ए में विटामिन सी पावल जाला, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम पावल जाला। तो देखा ई मधुमेह का जो जेके बीमारी है वो लोगन खातिर बड़ा एक नियंत्रण करने में ये बहुत मदद करला। तो अगर वो लोगन देखा भी एक फल के साथ साथ एक बीज भी बड़ा फायदेमंद हो।
0: अरे सही कलु, चाहे एक बीया के बात करा, चाहे पत्ती के बात करा, चाहे एक छाल के बात करा, हाँ कुल बहुत जौन है कि गुण से भरल है। और एक चीज और है कि चाहे तू एक पाउडर बना के खा, चाहे एक जौन है कि तू शरबत बना के पिया, चाहे तू एक सिरका बना ला ओके खा पिया, तो ऐसे जौन है कि कहा जाला ना कि पेट के लिए ई एकदम से बहुत ही बढ़िया औषधि है। जेके कब्ज के शिकायत बा आ जाना तू लाजो, जेकरे शरीर में खून का कमी बा ना, अगर ऊ भी एके अपने खान पियन में उपयोग में लिया हो ना, तो ऐसे ओके जौन है कि राहत मिली, खून साफ कराला और कहल जाला कि वजन जौन है ओके भी नियंत्रण में रखला। तो कुल मिला
1: देखा
0: के ई जौन है ना खान हो एकदम से है ना गुण से भरल हो, और गुण से भरल अपन कार्यक्रम भी रहला। मौसम देखा, मौसम के हिसाब से बहन लोगन अपने के रखे, और देखा घड़ी में हो गल
1: अपन
0: बहन
1: ख्याल
0: लोगन
1: रखे,
0: से
1: विदा
0: विदा
1: ले
0: ले
1: लेगा
0: तो
1: सब।
0: चलल जा।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं मोहम्मद इस्लाम। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में सबसे पहले प्रस्तुत है ये लचारी।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं मोहम्मद इस्लाम। अभी आपने सुना आपके स्वर में लचारी। लचारी के बाद कार्यक्रम में प्रस्तुत है ये कहरवा।

अभी आप सुन रहे थे दादरा, कलाकार थे मोहम्मद इस्लाम। इस दादरा के साथ ही आज का हमारा ये लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इनके गाये लोकगीत आप कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मिड डे न्यूज़ का प्रसारण दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी

0: अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराई

0: ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा। प्रस्तुति सुचि उपाध्याय की।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार।

कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ नाम यादों की किताब में खो जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर होकर भी हर धड़कन के साथ याद आते हैं।

एक बार जो तेरा दीदार हो गया, दिल का हर मौसम गुलजार हो गया। अब तो हर चेहरे में तुझे ही ढूंढता हूँ, जाने कैसा ये इश्क

तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

तेरे बिना ये शाम भी अधूरी सी लगती है, हर खुशी जैसे मुझसे दूरी सी लगती है। सांसें तो चल रही हैं मगर ऐ मेरे हमदम, तेरे बिन जिंदगी भी मजबूर सी लगती है। तू पास हो तो हर लम्हा इबादत सा लगे, तेरी बातों का असर राहत सा लगे। दुनिया की भीड़ में सब कुछ होते हुए भी तेरे बिना ये दिल वीरान सा लगे।

इसी गीत के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा अब यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे कुछ और अच्छी गीतों और गजलों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम कहकशा। प्रस्तुति सुचि उपाध्याय की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियो वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। शाम 4 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के लिए हम चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र।

0: भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया। आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं।

0: नौ बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी,
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फ़ौज की वर्दी, फ़ौज का डिसिप्लिन, फ़ौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फ़ौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो
0: जी
1: स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था,
0: जी जी
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी।
0: जी
1: बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है।
0: ओके
1: 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
0: जी
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की
0: जी
1: जानकारी
0: जी
1: थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे।
0: जी
1: पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे
0: जी
1: तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते।
0: जी
1: परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है।
0: ओके
1: तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग
0: जी
1: गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी
0: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
1: बिल्कुल
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग

0: पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे
0: बेसिकली
1: रहे हैं?
0: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी,
0: जी
1: जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया गया।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप सीटीसी में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों,
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है
0: बहुत प्रिय है,
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरेबली रहता ही था,
1: जी,
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।
2: Yeah!

0: अस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की। अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियाँ थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई

0: कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें।
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
0: ये
1: कार्य
0: सब
1: किया।
0: SSB कर रही है।
1: बिल्कुल, SSB कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को टेलरिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
0: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इस्टेब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा। तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
0: जी
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनना बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
0: जी
1: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे, विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
0: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा? कुछ आपको आइडिया? क्यों वो विकास नहीं चाहते?
1: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको उसको मार देते थे,
0: पनिशमेंट।
1: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल
0: जी
1: परगना में,
0: जी
1: बहुत सीधे साधे लोग
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे,
0: जी
1: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
0: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ, मैं जरूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
0: जी
1: चाहूँगा कि
0: प्लीज़।
1: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए, नाम लेना चाहूँगा मैं
0: जी
1: उनका, हमारे IG सर थे श्री संजय कुमार, हमारे DIG सर श्री सुमित जोशी
0: जी
1: हमारे कमांडेंट सर,

0: परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफ्स थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी।
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके।
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल। ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कॉम्पिटिशन है, और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल।
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीजी में जो ट्रेनिंग आप।
0: बिल्कुल। हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशन रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत

0: अच्छा
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं आपके अपने अंदाज में
0: बिल्कुल हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
0: बिल्कुल
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में।
0: बिल्कुल मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती होंगी।
0: बिल्कुल
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी से?
0: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है मतलब पतरा जो आप वो कहिए तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
0: जी,
1: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है,
1: जी।
0: बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
1: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बनाने जा रही है, और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए, वो वक्त की बात है वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनके सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी।
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
0: हूँ,
1: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली DDO का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी

0: वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे,
1: जी
0: और ट्रेनिंग है और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा
1: राइट।
0: हूँ।
1: मैंने मशीन खोली है तो देखिए, आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का। साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन AIR ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
0: थैंक यू।
1: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन
0: अच्छा,
1: लिख रहे हैं, आप
0: ओके
1: पहचान गए होंगे।
0: जी,
1: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम
0: धन्यवाद
1: उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
0: है यश का
1: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं।
0: जी।
1: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर ये?
0: जी
1: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव।
0: जी जय हिंद बाबूलाल।
1: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन
0: जी
1: दोनों आपके बीच आते हैं, यहाँ पे
0: बिल्कुल
1: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
0: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं। कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं। जी
1: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो
0: जी
1: मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए, मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
0: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
1: बट
0: बट
1: सुझाव अच्छा है।
0: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
1: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोग में आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?

0: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके
1: जी
0: लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है। और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं,
1: जी
0: उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा वो।

0: लिस्ट में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
1: ऑलराइट, टीपीटी सेल एफएचक्यू से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
0: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
1: ओके
0: जी,
1: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही एसएसबी में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
0: बिल्कुल।
1: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
0: जी।
1: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
0: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके,
1: जी,
0: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे।
1: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
0: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
1: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे।
0: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
1: तो
0: हुई है।
1: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
0: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
1: चौकन्ने हैं।
0: बिल्कुल।
1: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
0: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
1: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा,
0: धन्यवाद।
1: ऑलराइट, 29th एसआईडी से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सबकी तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका, हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
1: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें

0: मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता
0: ये
1: है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं।
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। धरती के गीत कार्यक्रम में सुनिए अवधी गीत, स्वर हैं मालिनी अवस्थी के।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अवधि गीत, स्वर थे मालिनी अवस्थी के। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:15 होने वाले हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: आगाज आज इन पंक्तियों के साथ करती हूँ। वो लोग रिवायात की जंजीर से खेलें, हम लोग चलो आज की तस्वीर से खेलें। वो अहले नशेमन हों कि गुलची हों कि सयाद, जो खेल भी खेलें रुखे तामीर से खेलें।
1: वाकई एक ऐसा लेखक जिसने शायद ज़िंदगी के खेल और पैतरों को बड़ी बारीकी से भापा होगा, तभी तो ऐसी कैफियत आ सकती है।
0: वैसे आप दोस्तों की कैफियत और खैरियत पूछने के लिए तो आपकी ये दो साथी हाजिर हैं, जिसमें आज मैं हूँ आपकी दोस्त तैयबा मारूफ,
1: और मुझे भी तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ दिया, तो स्वीकारिए हमें और अपनी युवानी को अब से पूरे 45 मिनट के लिए।
0: नमस्कार। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों? आशा करते हैं कि इस तीखी तीखी सी गर्मी के बीच आप संतुलित होंगे। अरे क्या हुआ, नहीं समझे?
1: यानी कि दोस्तों आप संतुलित भोजन, संतुलित नींद और संतुलित मनोरंजन कर ही रहे होंगे।
0: समझ गए ना दोस्तों, जिंदगी में इतना संतुलन तो बहुत ही जरूरी है। तो क्यों ना हम जरा अपने आज के युववाणी कार्यक्रम का भी संतुलन बना ही ले। शिक्षा, सूचना और

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: दोस्तों, बचपन के गिल्ली डंडे और छिपन छिपाई जैसे खेलों को खेलते हुए बड़े होते हम न जाने कब जिंदगी के खेल में उलझ गए, पता ही नहीं लगा। लेकिन अगर

0: आज भी कहीं वो बचपन वाला मंजर सामने नजर आ जाता है ना, तो बस वहीं ठहर जाने का दिल करता है।
1: लेकिन वक्त का तगाजा भी तो देखो कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी ने कैसे हम सबको 10 to 5 वाली घड़ी में समयबद्ध कर दिया है।
0: अब खेल तो वो भाषा है जिसके माध्यम से हम दुनिया को समझते ही हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। बचपन के हर चरण में, किशोरावस्था और उसके बाद भी, खेल हमें सीखने, ठीक होने और दूसरों से जुड़ने और उन कौशलों को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हमें सक्षम वयस्क बनने में मदद करता है।
1: जब हम खेल के माध्यम से बच्चों के विकास को पोषित करते हैं तो हम उन्हें आज की चुनौतियों का सामना करने और अपने आसपास की दुनिया के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और शक्ति का निर्माण करने में मदद करते हैं।
0: दोस्तों, खेल के माध्यम से बच्चे संचार, समस्या समाधान, भावनात्मक नियंत्रण और सहयोग जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करते हैं और ये क्षमताएं उन्हें एक जटिल और परिवर्तनशील दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये कौशल बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने, रिश्तों को मजबूत करने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाते हैं। और आज 11 जून के अवसर पर हम बात करेंगे खेलों के ही महत्व और उनके उद्देश्यों की, क्योंकि आज हम सब मना रहे हैं खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: दोस्तों, खेल केवल मैदान में खेली जाने वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने की एक कला है। खेल हमें स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनाते हैं।
0: बिल्कुल दिया, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो केवल हमारा शरीर ही मजबूत नहीं होता, हमारा मन भी प्रसन्न और तनाव मुक्त रहता है। और यही कारण है कि खेलों को हम जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, एक अभिन्न अंग मानते हैं।
1: आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बच्चे और युवा अधिकतर समय अपने मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर बिताते हैं। ऐसे समय में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: सही कहा दिया तुमने, खेल हमें एक्टिव रखते हैं, हमारी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं और हमें टीम वर्क का महत्व भी सिखाते हैं। खेलों के माध्यम से हम सीखते हैं कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है।
1: दोस्तों, खेल का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीत हासिल करना नहीं है, इसका उद्देश्य है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज का निर्माण करना।
0: क्योंकि खेल हमें अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना सिखाते हैं। खेल के मैदान में हर खिलाड़ी समान होता है और यही भावना हमें हमारे समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है।
1: खेलों का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोगों को एक दूसरे के करीब लाना। चाहे भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो या देश अलग हो, खेल सभी को जोड़ने का काम करते हैं।
0: यही कारण है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेल आयोजन दुनिया भर के लोगों को एक मंच पर लाते हैं और शांति तथा सहयोग का संदेश देते हैं।
1: खेल हमें हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं। अब जैसे जीत मिलने पर विनम्र रहना और हार मिलने पर निराश ना होकर फिर से प्रयास करना, यही तो खेल भावना का सही संघर्ष है।
0: अब देखिए दोस्तों, जो महान खिलाड़ियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम, समर्पण और अनुशासन ही तो छिपा होता है। इसलिए खेल हमें यह भी सिखाते हैं कि कोई भी लक्ष्य मेहनत और लगन से प्राप्त किया जा सकता है।
1: यदि हम हर दिन कुछ समय खेलों के लिए निकालें तो हम शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं।
0: साथ ही खेलों के माध्यम से हमारी नई दोस्ती बनती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक सोच विकसित होती है।
1: तो आइए इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी अपने जीवन में उचित स्थान देंगे,
0: क्योंकि एक स्वस्थ और सफल जीवन की नींव केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि खेल के मैदान से भी मजबूत होती है।
1: इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब एक प्रेरणादायक गीत भी सुन लें तो कैसा रहेगा दोस्तों।

हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में अश्क जो टपके कभी रुख से बहकर, तिफ्ल उनको ही

0: समझ लेना जी बहलाने को।
1: अपनी किस्मत में अजल ही से सितम रखा था, रंज रखा था, महन रखी थी, गम रखा था, किसको परवाह थी और किस में ये दम रखा था। हमने जब वादी ये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद ए वतन आई थी समझाने को।
0: यानी मेरे दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ऐसे महानायक हुए हैं जिन्होंने केवल अपने प्राणों, अपनी जान का बलिदान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी लेखनी को भी राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हथियार बना दिया। उनके बोले गए शब्द, लिखी हुई पंक्तियां और किया गया हर एक काम स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। और ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल।
1: 11 जून 1897 को जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। साथ ही वे एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। अपने क्रांतिकारी विचारों और काव्य कौशल के लिए पहचाने जाने वाले बिस्मिल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: दोस्तों, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीरों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। बिस्मिल सदृश क्रांतिकारी वीरों के बलिदान का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की मिट्टी का कण कण सदैव पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों का, क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा।
1: बिस्मिल साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उनकी जन्म कुंडली और हाथों की सभी उंगलियों में चक्र के चिन्ह देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी भी की थी कि यदि यह बालक जीवित रहा तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता।
0: दोस्तों, बचपन से ही बिस्मिल में राष्ट्रभक्ति के संस्कार गहरे थे और उनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। जब वो कक्षा 9 में थे तब आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से काफी प्रभावित हुए। किशोरावस्था में उन्होंने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को देखा और अनुभव किया, जिससे उनका मन स्वतंत्रता संग्राम की ओर तभी से झुक गया।
1: उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन में बिस्मिल उपनाम अपनाया, जिसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से व्यथित। यह नाम उनकी वेदना और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। रामप्रसाद बिस्मिल न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और कवि भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना था।
0: दोस्तों, बिस्मिल अपनी देशभक्त माता से पैसे उधार लेकर किताबें लिखते थे और प्रकाशित करते थे। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं देशवासियों के नाम, स्वदेशी रंग, मन की लहर और स्वाधीनता की देवी उनके विचारों का सशक्त प्रमाण देती हैं हमें। इन पुस्तकों से जो उन्हें धन, यानी जो पैसा उन्हें मिलता था, उससे वे हथियार खरीद लाते थे। उन्होंने बिस्मिल, राम और अज्ञात नामों से भी अपनी कई सारी रचनाएं लिखी।
1: बिस्मिल का सबसे प्रसिद्ध कार्य 1925 का काकोरी कांड था, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, अशवाक उल्ला खान जैसे साथ ही शामिल थे, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार जुटाना और क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित कराना। इस घटना में ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। फिर हुआ ये कि कुछ समय में बिस्मिल समेत 30 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया
0: और लखनऊ सेंट्रल जेल में रहते हुए बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिख डाली, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1928 में प्रकाशित भी किया था। बिस्मिल की यह आत्मकथा न केवल क्रांति का दस्तावेज है साथियों, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। अपने जेल जीवन के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला की भी रचना की, जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है।
1: 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में जब बिस्मिल को फांसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने केवल यही कहा कि अंग्रेजी शासन से सर्वनाश हो।
0: भले ही दोस्तों आज बिस्मिल हमारे बीच न हो, लेकिन उनके विचार, उनकी लेखनी और बलिदान आज भी जीवित हैं। उनकी स्मृति मात्र से ही मन में देशभक्ति भर उठती है और उनके जैसे क्रांतिकारियों की शहादत से ही हमारा ये देश आज़ाद हुआ है। आने वाली पीढ़ियां आप सभी की सदैव ऋणी रहेंगी। दोस्तों, हम उन्हें नमन करते हुए आज श्रद्धा सुमन स्वरूप ये गीत समर्पित करते हैं, जो हम सबके दिल को जज्बे से भर देता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

0: तो दोस्तों, इस सोलफुल से गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं अपने शब्दों के पिटारों को, जहां आज की यूथ डायरी में बात करने वाले हैं उन मुद्दों की जो युवाओं की जिंदगी और भविष्य से जुड़े हैं। क्योंकि आज का युवा सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं, बल्कि बदलाव की नई आवाज है।
1: दोस्तों, आज का हमारा हिंदी शब्द है निरपेक्षता, जिसका मतलब होता है किसी भी पक्ष, विचार या व्यक्ति के प्रति झुकाव न रखना, यानी किसी मामले में अपना पक्ष बनाए बिना निष्पक्ष तरीके से रहना। इसमें व्यक्ति किसी एक तरफ समर्थन या विरोध नहीं करता, बल्कि संतुलित रवैया अपनाता है। जैसे एक पत्रकार को खबर दिखाते समय निरपेक्ष रहना चाहिए, उसे किसी विशेष व्यक्ति का समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए।
0: और आज का हमारा इंग्लिश का शब्द है नैक, जिसकी स्पेलिंग है KNACK। इट मीन्स अ स्पेशल टैलेंट, स्किल और नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। इट रिफर्स टू हैविंग अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क इन अ गुड एंड इफेक्टिव वे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ नैक फॉर स्टोरी टेलिंग। द सेकेंड वन इज ही हैज अ नैक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सो क्विकली।
1: दोस्तों, हम सब जानते हैं हर दिन इतिहास में अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमें महान व्यक्तित्वों, महत्वपूर्ण घटनाओं और उन बदलावों की याद दिलाती हैं जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। तो आइए जानते हैं आज यानी कि 11 जून का दिन आज के इतिहास में क्या कहता है।
0: तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के मशहूर समुद्री खोजकर्ता और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक जॉक कुस्तो की। आज ही के दिन यानी 11 जून 1910 को फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर ऐसी खोजें की जिसने पूरी दुनिया को समुद्री जीवन को समझने का मौका दिया।
1: जॉन कुस्तो ने अंडरवाटर कैमरा और रिसर्च तकनीकों के जरिए समुद्र की अनदेखी दुनिया को लोगों तक पहुंचाया। उनकी डॉक्यूमेंट्री और काम ने लोगों में समुद्र और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाई।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही। इसी के साथ लोग आज भी उन्हें समुद्री खोज और संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी प्रेरणा मानते हैं।
1: इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के राजनीतिक इतिहास की, जहां 11 जून 1931 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म हुआ था।
0: वे भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों के लिए खूब चर्चा में रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक सफर काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान भी बनाई।
1: इसी के साथ उनके फैसलों का भारतीय राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिला, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने काम से दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश की।
0: और 11 जून भी ऐसी ही यादों से जुड़ा दिन है जो हमें खोज, नेतृत्व और बदलाव की प्रेरणा देता है। तो ये थी आज के दिन की इतिहास में दर्ज कुछ खास बातें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
1: अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम में।

0: जिसमें आज हम बात करेंगे USTTED योजना के बारे में। दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं और शिल्प कला के विरासत को बढ़ावा देने के लिए कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन योजना यानी USTTED का प्रस्ताव रखा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को प्रशिक्षण देना और उनके कौशल को उन्नत करना, ताकि उनकी पारंपरिक पैतृक कलाओं और शिल्पकला को सुरक्षित किया जा सके, संरक्षित किया जा सके।
1: युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देकर शिल्पकारों और कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना, अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत को संरक्षित करना और पारंपरिक कौशलों को वैश्विक बाजार से जोड़ना,
0: मौजूदा कामगारों, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना, हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका सृजित करना, अल्पसंख्यकों को वैश्विक बाजार में अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाना। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों की क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन करना है। ये प्रशिक्षित शिल्पकार और कारीगर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारंपरिक कलाओं और शिल्पों में प्रशिक्षण भी देंगे।
1: चयनित पारंपरिक कला या शिल्प के आधार पर प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 2 महीने और अधिकतम 1 वर्ष होगी। प्रशिक्षकों के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स, IT और स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण शामिल होगा।
0: तो दोस्तों, ये तो रही हमारी आज की अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम में USTTED योजना की जानकारी। इसके साथ ही दिया, जानकारियों के सिलसिले में अभी थोड़ा हम विश्राम लेते हैं और अपने दोस्त युवा दोस्तों को सुनाते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं अपने परिश्रमी युवा साथियों के अगली काम की खबर यानी रोजगार सूचना की। तो 18 से 32 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार हेतु कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है।
1: और आपको बता दें, ये भर्ती 12,256 वैकेंसीज के लिए आयोजित की जा रही है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप में से इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: बाकी इससे जुड़ी जानकारियों के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, ऐसे मौकों को हाथ से न जाने दें, समय पर आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करें,
0: क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, सही दिशा में उठाया गया एक कदम ही सफलता की शुरुआत होता है। और ऐसे में आप ही में से कुछ दोस्तों की सफलता हम तक भी तो आ पहुंची है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हमने आपसे ले लिया?
1: तो जनाब, लिया है ना हमने आपका जवाब। उसके लिए पहले एक बार कल के सवाल पर नजर डाल लेते हैं। तो हमने आपसे कल ये सवाल किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस महीने में मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है जून।
0: और हमारे जिन साथियों ने इसका सही सही जवाब दिया है, आंसर भेजा है, उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सिमरौल से रवि मौर्य, और खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम नागनपुरी, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंतीबाई, गणेश शिवदे और संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, चंदा चंदौली से अमित कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से।
1: आप सभी दोस्तों को हमारी युववाणी की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न सुनते हैं। चलिए, अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगा सन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है?
0: हमारा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भेजिए अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिए youth@gmail.com पर। इसी के साथ अब चलते चलते कुछ पर्यावरण संरक्षण की भी बातें की जाए, जो कि हमारे आज के समय की एक मेजर नीड है मेरे दोस्तों। और हम सब इसी पर्यावरण पर ही तो डिपेंड है। हवा, पानी, जंगल, जमीन और जीव जंतु ही मिलकर एक संतुलित इकोसिस्टम बनाते हैं, और यहाँ पर ये हमारे रहने के लिए जीवन को संभव भी बनाते हैं।
1: लेकिन दुर्भाग्यवश इंडस्ट्रियलाइजेशन

0: यानी शहरीकरण और बढ़ती उपभोक्तावादी सोच के कारण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहा है। वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नाश, इसके गंभीर और सजीव एग्जाम्पल हैं।
1: पर्यावरण प्रदूषण के कारण दोस्तों वायु और जल की जो क्वालिटी है वो लगातार गिरती जा रही है। दूषित वायु से हमें सांस संबंधी रोग हो रहे हैं और प्रदूषित जल से तो कई सारी घातक बीमारियां भी हो रही हैं।
0: ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र तल का बढ़ना भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी ही तो है। तो दोस्तों, अगर समय रहते पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये गंभीर परिणाम हो सकता है। इसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे पेड़ लगाना, जल और बिजली की बचत करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना।
1: यानी मेरे दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की सामूहिक और सामाजिक जो कह सकते हैं वो एक तरह से मॉरल ड्यूटी है हमारी। सो माई मल्टी टैलेंटेड यंगस्टर्स, इसी संदेश के साथ अब वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। बाकी जाते जाते आपकी दोस्त सैयबा हर बार की तरह आज भी यही गुजारिश करेगी कि ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों अपना, अपनों का और अपने आस पास के लोगों का भी।
0: बाकी समय का ख्याल करते हुए अब दीजिए हमें इजाजत अपनी रेडियो दोस्त दिया
1: और तैयबा को नमस्कार। जय हिंद।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहने की भले ही दुनिया अनिश्चितता आ अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, बाकी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास के राह पर आगे बढ़ रहा बा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक

0: नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद गुप्ता।
1: पिछला 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतन के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति भइल हो। सरकार के ओर से गरीबन के कल्याण बदे उठावल गईल कदमन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
2: गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को

0: मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दे हवे। वित्त मंत्रालय एगो अधिसूचना के जरिया से 22, 25, 27 और 30 फीसदी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने का घोषणा कर दे हवे। केंद्र सरकार साइबर अपराधियन के ओर से सुरक्षा प्रणालियन आ वित्तीय बुनियादी ढांचा पर बढ़त खतरा के लेके चेतावले हवे। एगो रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संबंधित लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संबंधित वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जुड़वा भारती।
1: आज अमर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जयंती मनावल जा रही हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दिले हमें। यह मौका पर बस्ती जिला में SBI फाउंडेशन के ओर से बनवावल गईल अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल युवा प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उनके फोटो पर माला चढ़ा के अमर क्रांतिकारी पंडित बिस्मिल के शहादत के याद कई गईल। प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर, आम्बेडकर नगर के साथ ही कई गो पूर्वी जिलन में बीतल रात से लेके आज सवेरे ले भइल बरखा से फिलहाल उमस भरल गर्मी से राहत मिलल हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलन में आज दिन भर बादल छौले रहल। ए बीचे मौसम विभाग बिहनहो कुछ जगहिन पर गरज चमक के साथे बरखा आ बौछार पड़ने को संभावना जतवले हवे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत। आज इस कार्यक्रम का विषय होगा तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अरुण कुमार यादव, साथ में मोहम्मद इस्लाम का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। शाम 7 से संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता सिद्ध नाम कपिलो मुनि। वार्ताकार होंगे प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा। रात्रि 8 से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगी चंद्रा रानी। रात्रि 8:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 से सुनिएगा आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा शहनाई वादन, कलाकार होंगे पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह

0: 7:31 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन, कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और कल दोपहर 12:45 पर सुनिएगा गायन, कलाकार होंगे पंडित चितरंजन ज्योतिषी, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। कल सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 पर, और कल दोपहर 1:45 पर। कलाकार होंगी डॉक्टर माधवी सिंह। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे कल दिन में 11:00 से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर, और कल रात्रि 8:00 से। कलाकार होंगी पूनम शर्मा। कल दोपहर 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। कल दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। कल शाम 5:15 पर युवा साथी युवाणी कार्यक्रम में सुनेंगे सिने दर्पण, यूथ डायरी, रोजगार सूचना और अन्य रोचक जानकारियां। कल शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे वार्ता धान की उन्नत प्रजातियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर जोखन सिंह, साथ में डॉक्टर माधवी सिंह का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। कल रात्रि 8:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष श्रृंखला। कल रात्रि 10:00 से सुनिएगा विज्ञान पत्रिका, और कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म भाग मिल्खा भाग से। आवाज है जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं प्रसून जोशी, और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म ब्रह्मास्त्र से। आवाजें हैं तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य टैंकर आक्रमणस्य विषये भारतेन प्रबलं विरोधं प्रकटितम्। एमटी जलवीर नौकायाः सर्वे कर्मचारिणः सुरक्षिताः इति सूचनास्ति। नीति आयोगस्य सभायां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य कृते कौशलस्य वृत्त्यावसरस्य च महत्वं प्रतिपादितम्। आन्ध्रप्रदेशस्य मद्य परिवहन भ्रष्टाचार प्रकरणस्य हैदराबादे ईडी इत्यनेन सहसा अन्वेषणं कृतम्। भारतेन मालदीव्स देशं प्रति खसरा रोगस्य सूच्यौषधीनां चिकित्सा साहाय्यं प्रेषितम्। अपि च अद्य रात्रौ बृहत्तमः फीफा विश्व चषक क्रीडा आरभ्यते, यत्र मैक्सिको दलं दक्षिण अफ्रीका दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। ओमान देशस्य तटे एकस्याः नौकायाः उपरि सद्यः एव कृतस्य आक्रमणस्य भारतेन निन्दितम्, यस्मिन् त्रयः भारतीय नागरिकाः मृताः। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रिमण्डलीय वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सर्वकारेण अमेरिका देशस्य चार्ज डी अफेयर्स इत्येतान् आहूय प्रबलं विरोधं प्रकटितमस्ति। सः अस्मिन् प्रदेशे नौकायानस्य उपरि निरन्तरम् आक्रमणानि अतीव चिन्तास्पदं वर्णितानि, तथा च शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानमपि अकरोत्।
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं, ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।

0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अद्य राजस्थाने जैसलमेर जनपदे रामगढ़े 20 किलोवाट क्षमतायुतस्य एफएम प्रेषकस्य आभासीय उद्घाटनम् अकरोत्। जयपुरस्य आकाशवाणी परिसरे समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटन कार्यमिदं सम्पन्नम्। अनेन सह राज्ये एफएम प्रेषकाणां संख्या विवर्ध्य 49 जाता। नूतनः प्रेषकः सीमावर्ति क्षेत्रेषु 80 किलोमीटर परिमिते क्षेत्र रेडियो प्रसारणस्य आवरणं प्रदास्यति। एतेन जनाः विविधाः सूचनाः शैक्षिक सामग्र्यः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सभां सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् देशस्य सीमा क्षेत्रेषु कश्मीरतः कच्छ पर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारण सेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् 20%-30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादम केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मंत्रालयेन उक्तम् यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। 26,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एजेटेका क्रीड़ा गृहे आरभ्यते। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हो रहे हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम। का हो मोहन भैया?
1: हाँ सुधु भैया, का हाल चाल बा? हाँ
0: अरे हाल चाल का पूछत हुआ। देखा भाई, अपन जो खेती किसानी बाना
1: हाँ
0: भाई, ओकर हाल चाल हमेशा बढ़िया रहला, जानला ना।
1: हाँ अब बढ़िया कैसे रहे कि जब हमन खेती किसानी में मेहनत समय से करल जाई,
0: मिलजुल के
1: मिलजुल के,
0: दोस्ती
1: हाँ
0: कह के है।
1: तब बढ़िया रही।
0: बाकी एक बात हो ना, कि कबो कबो ई जो दोस्ती हो
1: हाँ
0: देखे में ये वाला, कि एकाएक हो जाले बिना जानल सुनल सुनल आदमी से भी चलत चलावत यात्रा करत,
1: हाँ
0: जानला ना।
1: हाँ
0: और वो हो जाला देखा कैसे, जब केव तंबाकू ठोकत मिल जाला, जानला ना। तो आज जो
1: हाँ
0: नापन कार्यक्रम हो देखा सजीव फोनिन, हेलो
1: हाँ
0: कृषि जगत,
1: हाँ
0: यही विषय पर हो भैया, कि
1: हाँ
0: जो तंबाकू भैया लोग सेवन करे ना, एकर का शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ला और कितना घातक हो, है ना। का लक्षण आवला, एकर का मतलब उपचार कैसे होला, उपचार होई भी कि नहीं कि प्राण घातक हो, यही विषय पर आज चर्चा हुई अपने पंचायती में। और जे भैया लोग का समस्या हुई है तरह से, है ना,
1: हाँ
0: तंबाकू से संबंधित कोनो रोग वियाद भयल हो उन्हें,
1: हाँ उस सब लोग
0: तो
1: प्रश्न भी पूछ
0: वो
1: लिए हैं।
0: पूछी है। और नंबर हम बता देते थे कि 0542221050, और दूसरा नंबर हो 0542222102।

0: ए नंबर पर फोन करके अपने समस्या का समाधान पा सकना और समस्या का समाधान करिए। आज हमारे पंचायती में डॉक्टर अरुण कुमार यादव भैया
1: आयल हुआ
0: हाँ,
1: तो
0: जो कि
1: भैया
0: कैंसर
1: का
0: विशेषज्ञ हुआ, भैया का स्वागत है अपने
1: स्वागत बा।
0: पंचायती में। और डॉक्टर साहब, जैसा कि बातचीत हमन को होत रहा है कि तंबाकू जो अक्सर देखा में आवला कि कहूँ गाड़ी मोटर में भी लोग जात हुआ, एक दूसरे के जानत भी ना हुआ, तो कहीं भैया तो इसे बढ़ा दिया है ना, और उमन बड़ी मित्रता हो जाले और सेवन बड़े चाव से करें नहीं, तो इस तंबाकू का मतलब का शरीर का कोनो आवश्यकता हो या नशा बस करें कि का कारण हो कर?
2: धन्यवाद आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। तम्बाकू जो का सेवन जो है वो शरीर की कोई ज़रूरत को नहीं पूरा करता है, ये बस एक लत है और ये लोग सिर्फ अपनी मनोरंजन के लिए, मान लीजिए, बस
0: अच्छा
2: उसी के लिए सेवन करते हैं।
0: अच्छा,
2: इसका कोई ये कोई स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि
0: हाँ।
2: इसका तो अपने बहुत सारे दुष्परिणाम है तम्बाकू
0: जी,
2: सेवन के।
0: माने शरीर के जोन हमन के तत्व के जरूरत होले, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, बसा, ये सब कोनो चीज हमन नहीं मिलत।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: तो पहला भ्रम तो देखा हो
1: हाँ
0: मोहन भैया, यह
1: हाँ
0: दूर करे के
1: सुखदेव
0: जरूरत हो कि उमन कोनो तत्व नहीं हो, जिसन डॉक्टर भैया बतावत हुआ। जी,
2: और ये तम्बाकू में जो मेन कंपोनेंट होता है एक निकोटीन होता है,
0: अच्छा।
2: ये क्या करता है, ये लत बनाता है। जो कहते हैं ना कि तम्बाकू खा रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा है, तो जो उसमें निकोटीन होता है वो लत का काम करता है। और जो उसमें हार्मफुल जो बहुत सारे नुकसानदेह जो उसमें केमिकल पाए जाते हैं उनसे बड़ी बीमारियां
0: डॉक्टर
2: बनती
0: साहब, एक फोन आवत होते सब बतिया ली। हेलो हेलो, संपर्क ना हो पाता हो डॉक्टर साहब। हाँ जी बतावें।
2: तो जो उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक जो केमिकल होते हैं उनसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं।
0: अच्छा,
2: सबसे पहले तो नंबर आता है कैंसर का। और आपको मैं बताऊं कि अपने देश में सबसे ज़्यादा जो मुख के कैंसर हैं उसका सबसे बड़ा कारण तम्बाकू है।
0: अच्छा
2: और तम्बाकू सेवन कई प्रकार के हैं। कुछ लोग कहते हैं हम गुटखा खा लेते हैं, कुछ कहते
0: हाँ
2: हैं हम खैनी खा लेते हैं,
0: हाँ कुछ लोग
2: और
0: पान में डाल करके खाना।
2: हाँ हाँ
0: जी
2: कुछ पान में डाल के खा लेंगे। आजकल हुक्का का बड़ा चलन चल रहा है, होटल होटलों में हुक्का दे देते हैं, हुक्का का सेवन कर रहे हैं। तो ये जो तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के जो तम्बाकू का सेवन है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
0: अच्छा, ये जो तरह तरह का आप बतावत हुआ कि सुरती होले तंबाकू, तो सब में निकोटीन पावल जाला है?
2: निकोटीन तो लत बनाने के लिए होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत सारे जो नुकसानदेह केमिकल होंगे वो भी होता है उसके अंदर।
0: अच्छा, तो ओकर तरीका जो खाए का हो, जैसे कुछ लोग तो उठे में दबाए के खाना और कुछ लोग जो हो पान के साथ ही जो खाना, तो ओकर पीक वगैरह भी निकाल देना, तो ओकरे बाद भी ओकर असर हो जाला?
2: बिल्कुल बिल्कुल रहता है। और अभी तो ये हमारे जो हम पढ़ते हैं कि जहाँ भी तम्बाकू का जो भी शरीर के जिस अंग में भी तम्बाकू मतलब जहाँ पर भी तम्बाकू मुंह से लेके हमारे पैखाने के रास्ते जहाँ पर भी तम्बाकू का जाता है इसको, तो वो हर हर
0: हर
2: जो
0: रंग के
2: अंग है
0: प्रभावित कर रहा
2: हर
0: है।
2: अंग को प्रभावित करता है।
0: अच्छा,
2: और आप
0: अभी तक तो हम जानत रह लियो मोहन भैया,
1: हाँ
0: खाली मुंहों
1: सुखदेव
0: में जो जहाँ दबावत हुआ वहीं जो कर असर होला
1: लेकिन
0: है?
1: पूरा शरीर प्रभावित होले।
0: डॉक्टर भैया जिसन बतावत हुआ।
1: देखा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो है कि हम जानल चाहब कि जैसे बहुत लोग जो है कि बीड़ी सिगरेट भी पिए ना, तो बीड़ी या सिगरेट से शरीर के कौन अंग प्रभावित होला?
0: ओहू में तंबाकू होला।
1: तम्बाकू
0: हाँ सर
1: का
0: जी
1: वो में भी प्रयोग होला,
0: जी
1: तो कैसे एक दूर करें का प्रयोग कि जैसे कि कितना मात्रा में करें या न करें, या ऐसे अंग कौन प्रभावित होला?
2: जहाँ तक अंग के प्रभावित होने की बात है तो ये लगभग सभी अंग को करता है, क्योंकि सिर्फ कैंसर का नहीं, उच्च रक्त जो उच्च रक्तचाप होता है हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं,
0: जी जी
2: है ना, उसको भी होता है। आगे चल के कहते हैं ना आम भाषा में फालिस मार दिया, स्ट्रोक,
0: हाँ हाँ हाँ
2: इसकी भी संभावना धूम्रपान करने वालों की होती है।
1: अच्छा
2: अगर कोई महिला है तो उसके जल्दी गर्भपात होने का खतरा रहता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा जब वो गर्भावस्था में होगी।
1: जी
2: और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो तम्बाकू का जो सिर्फ जो तम्बाकू पी रहा है सिर्फ उसी को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, उसका जो
0: जी
2: धुआं है जो उसके आसपास लोग हैं ना उसको भी प्रभावित करता है।
0: मोहन भैया देखा
1: इतने
0: हुआ
1: बड़ा
0: ना।
1: काम का बात बा।
0: तो डॉक्टर साहब, ये लत कैसी लग जाला? का शरीर मांगा ला ये चीज के कि गलत सोहबत में रहले से या देख के सुन के इस तरह से याद आता जाले?
2: ये गलत सोहबत में है, और कई बार जब हम मरीजों से बात करते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो झूठ मूठ का फैलाया हुआ है, ऐसा कहाँ होता है, हम तो अपने दादाजी को देखे वो तो 70 साल जिए 80 साल जिए तम्बाकू खाते रहे, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ।

0: और आप बता रहे हैं तंबाकू खा रहे हैं तो आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन सब बातों का नहीं होता है। फिर
1: अच्छा
0: दूसरा, आजकल बहुत सारे प्रचार देखते हैं लोग, बहुत सारे आजकल मोबाइल पे देख लेते हैं वीडियो, तो वो भी जोश में एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में धूम्रपान की लत में लग जाते हैं।
2: जी,
1: तो
2: गलत असर पड़ जाना। अच्छा, तो डॉक्टर
1: हेलो,
2: साहब एकर, हाँ हेलो हेलो,
1: हाँ
2: हाँ डॉक्टर साहब एक फोन आवा था। हाँ भैया, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम गुलाबगंज मिश्रा ग्राम पंचायत
2: अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाए भैया, आपका नेटवर्क बड़ा कमजोर हो, आवाज सुन ना पावती हमन। जी हाँ, बतावा।
1: सुनाता भैया,
2: हाँ अब सुनात हो, बतावा कहाँ से आप बोलत हुआ?
1: हम गुलाबगंज मिश्रा ग्राम पचोकर तो रामजाईगंज जिला जयपुर उत्तर प्रदेश लोग लिए।
2: अच्छा, जी बतावे भैया, कोनो समस्या बा आपके?
1: समस्या ये है, अच्छा जैसे जन लोग भैया बीड़ी सिगरेट पिए लेन,
2: हाँ
1: वो में तुर्की पैरस है,
2: हाँ
1: तो जन लोग उल्टे खाते खैनी खाते हैं,
2: हाँ हाँ
1: तो दोनों नुकसान कराओ कि खाली जो बीड़ी सिगरेट पिए थे वो नुकसान दाय है।
2: हाँ डॉक्टर भैया, समस्या के समाधान आपकी जानकारी के करिए, डॉक्टर बतावे।
0: देखिए गुलाब जी, जो सिर्फ बीड़ी सिगरेट पे तंबाकू ही नुकसान नहीं करेगा, वो खैनी किसी भी प्रकार में जो तंबाकू का सेवन होगा वो सभी प्रकार जो हैं वो सभी नुकसानदायक हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीड़ी सिगरेट वाला ही नुकसान है और खैनी वाला फ़ायदा करेगा, वो आप जिस भी प्रकार में जिस भी तरीके से आपका सेवन करें तंबाकू का, सब नुकसानदायक है।
1: अच्छा लोग कहते हैं भैया गुटखा खावे या सिगरेट पीवे, बीड़ी पीवे कैंसर हो जाए, लेकिन तुर्की खाए तो ऐसा नहीं सकता कैंसर की संभावना बन सकता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है।
2: तो गुलाबचंद जी, आपके समस्या के समाधान हो गए, जो जिज्ञासा रहल है कि भाई सुरती कौनो भी रूप में अगर शरीर में जाई तो ओकर दुष्प्रभाव होई, चाहे बीड़ी सिगरेट के रूप में हो, चाहे खैनी के रूप में हो, चाहे पान में हो, चाहे गुटखा में हो, ये एकदम वर्जित हो। हाँ तो डॉक्टर साहब, वो जरूरत पर बात होते रहे कि कैसे एक नशा का आदि लोग हो जाना इतना।
0: हाँ तो वही जो दुष्प्रचार हो जाता है, लोग एक दूसरे की संगत में आके, गलत संगत में आके, और कई बार उसको उसको एक हीरो की तरह फिगर मान लेते हैं कि हम, मतलब हम देखिए बहुत ज़्यादा हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम सिगरेट पी रहे, देखिए। हाँ तो
2: जी
0: ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ा नुकसानदायक है।
2: कबो कबो देखें कच्ची उम्र रह लेते, प्रचार प्रसार के प्रभाव जो दुष्प्रचार के रूप में हो जाला, और उनके ऊपर बड़ा ओकर खराब असर पड़ा, और समझ नहीं पोता निकर प्रभाव का हो। और शुरू में तो भाई शौकिया करना या केहू के लालच में आकर के या कोई मुफ्त में पियावा, तो कबो कबो उसे भी लोग प्रभावित हो जाने कि अरे
0: बिल्कुल
2: हमारा लगता है का हो, और अच्छा भी लगा था उनके, है ना,
0: बिल्कुल
2: तो
0: बिल्कुल
2: बाद में जा करके वो आदत बन जाले।
0: जी
2: जी
0: जी जी
2: तो डॉक्टर साहब, एकर दुष्प्रभाव शरीर पर आप बतौना है कि सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो ये हो कि कैंसर हो जाला,
0: जी
2: बाकी और कौन कौन अंग प्रभावित होला और का का असर पड़ाला?
0: देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे आप इसका सेवन करते हैं तो मस्तिष्क में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं,
2: अच्छा।
0: जो धमनियां होती हैं उसमें उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती हैं, और इसके साथ साथ मैंने बताया कि जो प्रेग्नेंट या गर्भावस्था में औरतें
1: हेलो,
0: होती हैं उनको नुकसान करते हैं।
2: डॉक्टर साहब एक फोन आओ तो। हाँ भैया, कहाँ से बोला था ना आप?
1: हम शायदपुर मुरलिया यादव बोल रहे हैं।
2: अच्छा, का नाम पड़ी आपका?
1: मोहन यादव।
2: अच्छा, तो का जानकारी चाहत हूँ आप?
1: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: हाँ
0: नमस्कार नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, बीड़ी सिगरेट है, खैनी है, तो मैं लोग जो खैनी खाते हैं, खैनी का जो प्रभाव जो खाता है उसी को पड़ेगा, और जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं उसका प्रभाव जो दूसरों को पड़ता है, जो करता है उससे ज्यादा नुकसान करता है उसको।
0: देखिए सही बात है, जब खैनी आप खा रहे हैं तो उसका तो एक्सपोजर आप, मतलब उसका तो प्रभाव आपको पड़ ही रहा है, लेकिन जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसका जो धुआं है, उसका जो धुआं है जो आपके आसपास है या परिवार में जो लोग हैं, उसको एक तरह से सेकेंडरी या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, तो वो उसका दुष्प्रभाव उनको भी पड़ेगा, है ना। तो लोग नहीं समझते हैं, कई बार घर पे ही उसका धूम्रपान कर लेते हैं या कुछ जगहों पे धूम्रपान कर लेते हैं बिना इस चीज़ को जाने कि हमारे आसपास कोई छोटा बच्चा हो सकता है या कोई बुजुर्ग हो सकती है या हो सकता है कोई महिला हो गर्भावस्था में हो, तो उसका भी दुष्प्रभाव होता है। और अभी तो ये भी पाया गया है कि जो धुआं होता है सिगरेट का, जो धुआं होता है वो दीवारों में, पर्दों में, आपके बिस्तर में, वो भी होता है, उसको टर्शरी स्मोकिंग कहते हैं, वो भी होता है, तो वो भी नुकसानदेह होता है,
1: तो
0: तो ये
1: जैसे
0: सब
1: मान लो कि
0: दुष्प्रभाव है।
1: मैंने आप उम्मीद कर रहे हैं, हमारे पास जो है कोई बैठा है, तो जितना हमको नुकसान करेगा उतना ही नुकसान उनको भी करेगा।

0: जी, देखिए आप सिगरेट पी रहे हैं, आप तो चलिए अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बीड़ी पीना बंद कर दे, मतलब बीड़ी आपने एक पी है, लेकिन जो धुआं है वो कैसे उसको कंट्रोल करेगा ना, तो जो उसके
1: अच्छा
0: बगल में
1: अच्छा
0: उसके हाथ में तो उसको रोकने का क्षमता नहीं है।
1: सर, इसको मतलब बचाव के लिए मतलब कैसे आदत डालें कि छूट जाए?
0: देखिए आजकल ना, आजकल आजकल हमारे पास सर जो भी अस्पताल हैं उनमें ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं और सुविधाएं भी हैं, जिसको नशा मुक्त केंद्र कहते हैं, वहाँ पे जाइए, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, वो उसको समझाएंगे। आजकल निकोटीन के च्युइंगम्स आते हैं और उसको वो कहते हैं कि इस मात्रा में आप लीजिए उसको, वो धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी मात्रा को, निकोटीन जो होता है जिससे लत लगती है, उस च्युइंगम्स को खाने के लिए कहते हैं, और धीरे धीरे उसकी डोज कम करते करते करते उस लत को छुड़ाने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल आप आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाइए, नशा उन्मूलन केंद्र, वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे।
2: डॉक्टर भैया देखा कैसन बात बताओ थे मोहन भैया, कि
1: हाँ
2: जो जैसे कि वो सिगरेट या बीड़ी पियलेस, तो ओकर जो धुआं हो ना, देखा वो आसपास जैसे पर्दा हो या चदरा हो बिस्तर हो, अगर उमन जो हो उस समाहित भेल तो ऊपर जे बैठी या ओकरे जे संपर्क में आई ओके भी नुकसान करी
0: जी
2: डॉक्टर।
0: जी जी आ देखा
2: कितना
0: एक चीज
2: खतरनाक
0: बात
2: भेल।
0: और देखा ध्यान ना देला जो ना कि डॉक्टर साहब जो कहना कि देखा जे पियला ओके तो जो असर करबे करी, आ जे बगलिया में वाला ना सोच ना कि हाँ कोनो हम पिए थे का कि हम जो ही, लेकिन धुआं जो ना कि उन्हों के
2: प्रभावित
0: पास
2: कर रहा
0: प्रभावित करेला तो ऊ ना
2: बिल्कुल
0: सोचे कि हम बच जाई,
2: जी।
0: ऊ धुआं संगे रहबा तो गेहूं के संगे घुनो पिसाई
2: तो
0: ना
2: डॉक्टर
0: जी।
2: साहब लक्षण जोन हो एकर कैसे का दिखाई पड़ल है?
0: सर देखिए सबसे पहले तो जो अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर, सबसे पहले कैंसर की बात करें तो सबसे पहले कैंसर होने शुरू होने से पहले भी बहुत सारे शरीर में संकेत आते हैं, जैसे लालिमा आ जाती है, गाल में मुख में लालिमा आ जाएगा या सफ़ेदी आ जाएगी, जिसको आप साधारण तरीके से हटाने की कोशिश करेंगे वो हटेगा नहीं, या मुंह खुलना कम हो जाएगा, मुंह खुलना कम हो जाएगा, तो ये सब जैसे बॉडी आपको संकेत दे रही है, शरीर आपको ये संकेत दे रही है, तो आपको सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र जाके उसकी जाँच करानी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपका शरीर संकेत दे रहा है कि अगर आप इस लत में हैं तो अब आप रुक
2: जी।
0: जाइए, अब इसके आगे मत बढ़िए।
2: माने ये प्राथमिक संकेत हो
0: यस,
2: एक
0: ये
2: तरह तरह।
0: शुरुआती। हाँ,
2: अच्छा
0: और
2: अच्छा
0: उसके बाद जब वो कैंसर का रूप लेगा तो कोई छाला बन जाएगा, कोई घाव बनेगा जो भरेगा नहीं, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसका जो आकार है वो जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा,
2: घाव जो अंदर हो बढ़त चली
0: बढ़ता
2: जाए।
0: चला जाएगा, फिर
2: अच्छा
0: बाद में गिल्टियाँ निकल सकती हैं गले में, तो वो जब होगा तो स्टेज बढ़ता चला जाएगा,
2: अच्छा
0: और शुरू में तो लोग इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात बता रहा था, जैसे आप पूछ रहे थे ना किस उम्र में लोगों को होता है,
2: जी जी
0: पहले जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, हम अपनी
2: जी
0: किताबों में पढ़ाया जाता था कि ये 60-70 सालों में ये बीमारी होती है मुख्य कैंसर और ये सब, लेकिन अभी जो हम अपने रोज दिनचर्या ओपीडी में देखते हैं मरीज,
2: जी
0: उसमें हर उम्र के लोग आने लगे हैं। मैंने सबसे 21 साल के लड़के को भी मैंने देखा है कि उसको मुख का कैंसर हो गया है, और वो बहुत ही कम उम्र से इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं, गुटखा खैनी सबका सेवन करना शुरू कर देते हैं।
2: तो ऐसे रोगियों के जब आप लोग इतिहास पूछत हुई हैं, उनका दिनचर्या पूछत हुई हैं, तो लोग बताओ हुई हैं कि हम
0: जी
2: सिगरेट पी लें या खैनी
0: हाँ
2: खाई लें?
0: जी, बहुत ही कम उम्र से पीना शुरू कर दिया, कहीं पे भी एक बार आदत पड़ी वो खाना शुरू कर देते हैं बहुत ही कम उम्र में, और फिर धीरे धीरे वो कैंसर का एकदम से मतलब बड़ी स्टेज में आके
2: जी।
0: और
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर जब हो जाला उनके जे गुटखा या धूम्रपान करत है, तो ओकर इलाज भी हो संभव है कि
0: जी
2: ना?
0: जी जी बिल्कुल संभव है। आप सही टाइम पे और सही उसको अगर आप मतलब सही शुरुआती अगर आप उसको जब भी स्टेज होती है अगर आप उसको पहचान पा रहे हैं तो आप स्वास्थ्य केंद्र पे जाके उसको दिखाइए,
2: जी
0: उसकी परामर्श लीजिए, और
2: हाँ
0: शुरुआत स्टेज में रहता है तो बिल्कुल उसके ठीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब उसी के बनस्पत अगर आप लेट स्टेज में जाएंगे तो
2: जी
0: उसके
2: जी
0: चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसकी और जगह फैलने के चांस बढ़ जाते हैं।
2: मतलब कि जब शुरू में पता लगे, आभास होए लगे, तुरंत ही जाके डॉक्टर साहब को दिखा दे।
0: जी।
2: कबो कबो न मोहन भैया, ये
0: हाँ
2: लोग कहे ना कि अरे वो खाना खात रही दाँते से हमार गाल कट गल या जीभ
0: हाँ
2: कट गल,
0: हाँ हाँ
2: और ढेर दिन ले समझला कि लापरवाही कैले रहना, और जबकि कारण ओकर रहला दूसर।
0: जी
2: डॉक्टर
0: जी
2: साहब,
0: जी जी
2: तो का इमन कुछ भिन्नता जान पावे जान सकीला हम कि नहीं?
0: देखिए मुझे लगता है कि जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, जो उसके सलाहकार हैं, आप उनसे संपर्क करिए ना, आप खुद डॉक्टर मत बन जाइए।
2: जी जी
0: हाँ
2: जी
0: जी, जैसे अगर आपको ये बार बार आपका गाल कट रहा है या आपको लग रहा है मुंह में सफ़ेदी बना रहा है, लालिमा है या मुंह कम खुल रहा है, तो उसका इधर उधर ना जाके
2: विशेषज्ञ जो
0: विशेषज्ञ के पास जाइए, उनसे परामर्श लीजिए।
2: हाँ वो सही बताए।

0: जी
1: डॉक्टर साहब, ये तो स्पष्ट हो गल, मतलब जो उनकी दिखाई पड़ी जैसे कि जान सकल ना कि हाँ जौन हो कैंसर का लक्षण ही हो सकला। एक अलावा क्या अंदर का जौन अंग हो, आंतरिक अंग हो, वहाँ भी कुछ इस तरह का प्रभाव हुई तो दिखाई पड़ी ना हो कि कैसे जाने?
0: सर देखिए, हमारी जो मानव रचना ऐसी है कि जब भी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी तो कुछ ना कुछ संकेत देगा।
1: जी
0: अब वो ये हमारे पर है कि उसकी लापरवाही ना करें, इधर उधर किसी को मत दिखाएं, झाड़ फूँक के चक्कर ना पड़े और सही जगह परामर्श लें।
1: जी
0: अब जैसे मैं उक्त रक्षा बता रहा हूँ तो उसको हो सकता है सर में दर्द हो, या उसके सीने में दर्द हो, या उसको दिक्कत हो रही है, स्ट्रोक की दिक्कत होगी तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कि एक तरफ का अंग काम ही नहीं कर रहा है, हल्का पड़ रहा
1: अच्छा
0: है ना, या उसको
1: जी
0: चक्कर आ रहा है। तो कुछ ना कुछ लक्षण आएंगे, तो उन
1: जी जी
0: लक्षण को नज़रअंदाज ना करके उसका परामर्श ले लीजिए। और परामर्श लेना कोई नुकसानदेह या कोई गलत चीज़ नहीं है।
2: जी डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानल चाहब कि
0: जी
2: जैसे बहुत लोग जो उन बीड़ी सिगरेट तंबाकू पियत हुआ कुछ समय के बाद उनके खांसी बहुत ज़्यादा आवे लगे, कुछ खांसी के संगे संगे बलगम भी आवे लगे, ये
0: जी
2: काहे होला जो ना?
0: देखिए, वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, वो कंडीशन हो जाती है, इसको COPD कहते हैं,
1: अच्छा
0: है ना, क्रॉनिक
2: जी
0: ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर कहते हैं उसको। उसमें जो फेफड़े होते हैं वो उनकी संरचना ही गड़बड़ हो जाती है,
2: जी
0: तो फेफड़े सही से काम नहीं करते हैं, तुमको खांसी आएगी क्योंकि वो सही से अपना अपना जो उनका मतलब फंक्शन है वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो वो अब उसके लिए जब लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी सांस फूलेगी, चलने में भी सांस फूलेगी, बैठे भी सांस फूल रही है, बलगम आ रहा है, खांसी आ रही है।
2: तकाई जो धुआं हुआ बीड़ी सिगरेट तंबाकू उजा के फेफड़ा जमेला?
0: उसके जो केमिकल होते हैं वो नुकसान करते हैं, जो उसमें जो रसायन जो कहते हैं ना, जो हाँ जो नुकसानदेह रसायन होते हैं ना, वो जाके नुकसान करते हैं।
1: मोहन भैया, डॉक्टर भैया
2: हाँ
1: का काटा ये होना कि देखा
2: हाँ
1: जो धुआं लोग पहले लेला पेटे में जल्ला ना, और ओकरे बाद नाकी से मुँहे से बाहरे निकाल देला, बाकी तो छन करके जौन केमिकल होला ना ऊ
0: अवशेष
1: भर रह जाला,
0: केमिकल।
1: ओकर जौन
0: जी जी
1: असर
0: जी
1: पड़ला।
0: हाँ
1: तो मोहन भैया
2: हाँ
1: देखा, एक सनेश पंच भैया लोग सुन ले, ओकरे बाद हम लोग अपन डॉक्टर भैया से बात कही कर ले।
2: सुनवा दे भैया।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: डॉक्टर साहब, हम लोग के बतकही होत रहा कि एक जो दुष्प्रभाव शरीर पर दिखाई पड़ा समय, तो आप बताना कि हाँ, रक्तचाप का भी कारण हो सकल है और शरीर का कौन कौन अंग प्रभावित हो सकल है। जैसे आप बताना कि फेफड़ा भी प्रभावित होला, तो अब जैसे शरीर के अंदर तो आंत हो, लीवर हो,
4: हृदय विभाग,
3: हाँ, सर, ये सब पर भी असर पड़ा ला?
5: जी जी जी, सभी अंगों पे असर उसका पड़ता है।
3: तो ये सब का क्या सामान्य लक्षण कुछ दिखाई पड़ा ला? वो जैसे आँख के माध्यम से या जीभ के माध्यम से या चेहरा के जो कांति होले, क्या उस सब में कुछ फर्क
5: पड़ा
3: ला?
5: बिल्कुल बिल्कुल, आपको जैसे लग रहा है आपकी उम्र जल्दी बढ़े जा रही है। आपके चेहरे की जो चमक है वो कम हो गई, आपकी उम्र लग रहा है जैसे जल्दी ही बड़ी हो जा रही है अगर आप स्मोकिंग या धूम्रपान कर रहे हैं तो।
3: ढेर जने के चेहरा पर देखल जाला कि सिकन पड़ल रहा है, खिंचाव जैसा है, कम है उम्र में, तो वो भी एकर दुष्प्रभाव हो सकता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल हो सकता
4: है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक जानकारी बतावन कि जैसे जोन लोग तंबाकू सेवन करत हुए या धूम्रपान करत हुए, उनका का जैसे हार्ट अटैक का ज्यादा संभावना बन रहे की?
5: बिल्कुल, उनकी संभावना ज्यादा रहती
4: है, संभावना बढ़ जाती है।
5: बिल्कुल बढ़ जाती
3: है। मैंने हृदय जब कमजोर हो जाये है, तो हृदय जब सही काम न करी तो भाई ओके फेल हुए का या ओके अटैक हुए का संभावना ज्यादा रही ना।
4: देखा डॉक्टर साहब कितना बढ़िया बात दूठे बताऊना है कि जो ना कि फेफड़ा आ जो हृदय हुआ, इस शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये दोनों प्रभावित करता है, ये जो धूम्रपान और तंबाकू सेवन।

0: डॉक्टर साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग जो उनके बाहर से दिखाई देला अपन आँख हो, तो आँख का क्या स्थिति हो?
1: देखिए, अब किसी को रक्तचाप हो गया तो रक्तचाप के तो आंख पे प्रभाव आएंगे, तो सब कड़ियां तो आपस में जुड़ी
0: एक
1: हुई
0: जुड़ल
1: है,
0: हो,
1: जुड़ी हुई
0: बिल्कुल।
1: हैं,
0: हाँ,
1: तो एक
0: माने
1: समस्या
0: आँख
1: होगी।
0: का रोशनी भी कम
1: जी
0: हो
1: जी
0: सके या जा
1: जी
0: भी
1: जी
0: सके।
1: तो वो सब तो होता ही है कि दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।
0: जी,
1: और जो मैं बता रहा था ना, जैसे कहते हैं हड्डियों में भी प्रभाव पड़ता है।
0: हड्डी।

0: हड्डियों में भी प्रभाव पड़ता है।
1: हड्डी
0: हाँ, कि जो हड्डियाँ जिस चीज़ से बनता है कहते हैं उसे कोलाजन जो होता है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते, तो उससे मांसपेशी और हड्डी भी कमज़ोर होती है।
1: तो थोड़ा सा उम्र जब बढ़ी तो वह
0: हाँ
1: लटकानी में जो
0: यस
1: नो कहिए
0: जी
1: कि भाई हम तो देखा झुक के चलत ही
0: जी जी
1: है,
0: जी
1: खड़ा ना हो पाओ थे, घुटना में कमजोरी आ गई
0: हाँ जी
1: है
0: जी
1: ना, या तो जौन हड्डी जौन पीछे वाली होले
0: रीढ़ की हड्डी
1: रीढ़ का हड्डी
0: हाँ कमज़ोर हो जा
1: उमन जो
0: जल्दी,
1: जगह कम हो जाला लोग का है ना,
0: वो
1: तो
0: जल्दी हाँ उसके फ्रैक्चर होने के भी चांसेस हैं, वो झुक वो तो कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ
1: अरे कबो कबो तो डॉक्टर साहब सुना में आवला कि हल्का सा ठोकर लग गई, गिर गई ना और हड्डी टूट
0: जी
1: गई,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: बात समझ में नहीं आता, लेकिन आप जब आप बतौला है कि हाँ हड्डी कमजोर हो जाले
0: जी
1: तब ये बात समझ में आवत हो कि भाई वही कारण से हो सकला,
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल
1: तो हड्डी तो बहुत मजबूत होले।
0: जी जी
2: अच्छा बहुत बार यो देखा जाला डॉक्टर साहब कि जैसे युवा वर्ग में ज़्यादा देखा कि मिलेला कि जैसे पढ़त हुआ लिखत हुआ तो सोचते हैं कि तनी एक सिगरेट पी लें तनी दिमाग तनी ताज़ा हो जाए,
0: ताज़ा हो जाएगा,
2: हाँ
0: नींद नहीं आएगी
2: नींद ना आवत बात तो जैसे कि नींद भी उनके हो जाए, तो एकर का वास्तव में हो कि खाली मतलब मन का भ्रम है।
0: मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कभी धूम्रपान नहीं किया, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए कभी सिगरेट या तम्बाकू की ज़रूरत पड़ी।
1: जी।
0: और आप अगर देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप सिगरेट के डब्बे पे देखिए या तम्बाकू के डब्बे देखिए, इतना बड़ा बड़ा चित्र कैंसर का बना रहता है,
1: जी। चेतावनी भी लिखल रहे
0: चेतावनी
1: में।
0: लिखी रहती है।
1: हाँ। एकरे बाद भी अगर सेवन करत हुआ तो समझ ला कि अपन जिंदगी खुद लेत हुआ तू। आहे देखा कहल जाला ना कि मरले पर मुखाग्नि देवल जले है, आ यहाँ
2: सही
1: तो तू
2: बात है,
1: सिगरेट मुँहे में लेके अपने मुँहे में खुदाई आग लगावत हुआ
2: अपने के खुद
1: है
2: मुखाग्नि जिंदा दे
1: जी
2: लेला।
1: जी
2: हाँ
1: जी जी
2: तो
1: ई बात तो बहुत गहराई से सोचे के जरूरत हो मोहन भैया है ना,
2: हाँ
1: कि हम तू जौन हो सब कुछ जानते हुए समझते हुए बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए जितना जीवधारी हुआ है धरती पर डॉक्टर साहब
0: जी बिल्कुल
1: सबसे बुद्धिजीवी कहल जाला कि मानव हुआ
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: और
0: बिल्कुल
1: इतना बुद्धिजीवी होते हुए भी जौन हो विवेक का प्रयोग न करके ये तरह का काम करें तो ये बहुत बड़ी मूर्खता हो।
0: और देखिए सिर्फ आप ही नहीं पूरा परिवार उसमें देखिए प्रभावित होता है ना, एक
1: बिल्कुल
0: तो क्योंकि
1: अगर
0: आप
1: एक
0: आगे चल
1: आदमी
0: के जल्दी रोग हो जाएगा तो
1: हाँ
0: पैसे जो आपके वहाँ अच्छी जगह पे लगाने हो आप पैसा इलाज में दवा में लगा रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल अरे भाई वो पैसा बचा के खेती किसानी में खाद लिया हो बदे के
0: जी
1: अपन गोरू चौवा बढ़िया जो लिया हुआ पशु
0: बिल्कुल
1: दाना लिया हुआ ओके
0: जी
1: खा,
0: जी
1: और
0: जी
1: नहीं अपने बाल बच्चन के दूध
2: वो
1: पिया हुआ
2: हाँ
1: नहीं
2: जी
1: लिया हुआ
2: अरे
1: बढ़िया से
2: भैया तो
1: है ना।
2: नून तेल घरे के चलावा जो ना बचा के पैसा
1: बिल्कुल
2: हाँ
1: बिल्कुल
0: जी
2: तो वो ज्यादा बढ़िया रही ना।
1: तो डॉक्टर साहब ये बतावे कि जैसे अब क्योंकि कैंसर का स्वरूप हो गल तो एकर उपचार बहुत महंगा होला का।
0: नहीं देखिए हमारे पास आजकल इतनी सारी मतलब सब भारत सरकार हमें इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं,
1: जी
0: सरकारी में बहुत सारी दवाइयां आपको फ्री में मिल जाती हैं,
1: हाँ
0: बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से फंड आ जाता है उससे
1: हाँ
0: भी बहुत सारी मदद मिल जाती है,
1: अच्छा
0: तो ये भ्रम ना पाले कि कैंसर हो गया तो बहुत ही महंगा इलाज होगा, ऐसा नहीं
1: हाँ
0: है
1: हाँ पहले तो हो ही ना पावे, अगर हो
0: जी।
1: जात हो तो भाई दिमाग में बना के जान तो बचो ही के
0: हाँ
1: हो
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: बिल्कुल
1: बाकी तो देखा खेती बाड़ी कुल प्रभावित हो जाए, बाल बच्चा पशु चौवा कुल
0: जी
1: अपन
0: जी
1: नुकसान
0: जी
1: हो जाए
0: जी
1: है ना।
0: जी जी अब आप सोचिए कि जितना भी सिगरेट इतना पैसा ले रहे हैं उतने के अच्छा अगर एक फल खरीद लें या हरी सब्जी खरीद लें तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, परिवार में सबको फायदा करेगा,
1: जी जी
0: बल्कि आप एक धुआं अगर देंगे तो पूरे घर में सबको ही प्रभावित कर रहा होगा कहीं ना कहीं से।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब ये दवा से ठीक हो जाला कि कभी कभी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ जाले क्यों नहीं निश्चिति होले।
0: सर देखिए अगर कैंसर हो रहा है तो शुरुआती स्टेज में है तो अगर ऑपरेशन हो सकता है तो ऑपरेशन हो ही जाएगा।
1: शुरुआत में
0: हाँ जी तो है ना, तो
1: कि
0: ठीक
1: दवा
0: होने
1: दे
0: की
1: करके कुछ
0: संभावना
1: दिन इंतजार करने के हो सकाला
0: नहीं,
1: ठीक हो
0: नहीं
1: जाए
0: नहीं नहीं नहीं
1: नहीं।
0: ऐसा नहीं है,
1: अच्छा
0: दवा से नहीं
1: अच्छा
0: है, वो भ्रम है, उसके लिए सबसे पहले जाइए क्योंकि अगर वो चीज़ वहाँ पर ख़राब हो गई वो जो भर नहीं रही है छाला या घाव जो भी है तो ऑपरेशन होके निकल जाएगा वो, या किसी परिस्थितिवश अगर नहीं हो पा रहा है ऑपरेशन या पेशेंट फिट नहीं है या बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर वहाँ पे सिकाई हो जाती है जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं हम लोग।
1: जी
0: हाँ तो उसको विकिरण जो होते हैं उससे
1: हाँ
0: हम कैंसर को मारते हैं, तो
1: अच्छा
0: वो भी एक मतलब चिकित्सा की एक पद्धति है। और जब एकदम से स्टेज में है बीमारी हर जगह फैल गई है तब कीमोथेरेपी के नाम की होता है
1: हाँ हाँ जी
0: तो वहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं
1: अच्छा तो ई कुल चिकित्सा जो हो ऑपरेशन से अलग हो।
0: जी। ये सब तीनों ही चिकित्सा की अलग अलग पद्धति है जो
1: हाँ
0: कैंसर में इनका रोल होता है, कई
1: अच्छा
0: बार दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं कई बार अलग अलग रहता है।
2: तो ये सुविधा डॉक्टर साहब जैसे इधर पूर्वांचल में देखल जाए तो कहाँ कहाँ उपलब्ध हुआ।
0: पूर्वांचल में देखिए तो बनारस में तो है ही है, यहाँ पे हमारे पास BHU अस्पताल है
1: जी
0: और
1: जी
0: इसके बाद हमारे पास टाटा है माँ बनाओ, उसके बाद हमारे पास प्रयागराज में देखें तो प्रयागराज में भी है एक
2: जी
0: ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसके बाद स्वरूप स्वामी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी सुविधा है, गोरखपुर में देखें तो गोरखपुर में भी है, वहाँ पे एम्स है गोरखपुर है और जो उनका वहाँ पे सरकारी है।

0: अस्पताल, जिला, मतलब जो मेडिकल कॉलेज है, स्टेट मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी इसका इलाज है।
1: कहे का मतलब मोहन भैया,
2: हाँ सर
1: जैसे
2: भैया,
1: डॉक्टर भैया बताओ थो कि अगर इतना का लक्षण दिखाई दे तो तत्काल इमन जोन हो लग जाए के चाहिए, और बढ़िया से
0: जी
1: बढ़िया जहाँ इलाज हो तो वहाँ दिखावे। कुछ लोग जाना तो क्या करें ना,
2: हाँ
1: भ्रम पैदा करें ना कि अरे हमारे यहाँ आवा हम सर्तियाँ इलाज कर दे, गारंटी से इलाज कर दे,
2: जी
1: एकदम
2: जी
1: ठीक कर
2: लोग तो
1: दे
2: ज्यादा
1: है।
2: हूँ।
1: और कुछ लोग जो है वो है खिड़बिड़िया दवाई जो है देते रही हैं, और कौन पानी वाली दवाई कुल देते रही हैं, और पता चल कि ये जाँच फाँच कुछ भयल नहीं, अब रोग
0: रोग
1: बढ़ गल ऊपर
0: बढ़
1: एकदम, तो
0: गया,
1: ओकरे बाद बढ़िया जगह भी जेबा तो कैसे बचवा।
0: कैसे बचेंगे जी।
1: तो मोहन भैया, डॉक्टर
2: हाँ
1: साहब देखा इतनी अच्छी जानकारी देना कि तंबाकू सेवन का काका दुष्प्रभाव शरीर पहुंच सकला और जान भी जा सकले मन ज्यादा
0: जी
1: बढ़ने
0: जी
1: पर।
0: जी
1: तो डॉक्टर भैया आप हमारे पंचायती में ना, और इतनी अच्छी बतकही कहना, इतनी अच्छी जानकारी देना, जागरूक कहना हमारे किसान भैया, श्रोता भैया लोगन के, डॉक्टर अरुण कुमार यादव आपके एक रुपये बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो मोहन भैया
2: हाँ
1: हमारे
2: सर
1: एक साथी
2: भैया,
1: चलने के बेला भी हो तो
2: पंचलोक
1: डॉक्टर भैया
2: से,
1: के धन्यवाद दे करके हम कह के
2: पंचलोक
1: चलने
2: से
1: चले
2: विदा
1: जाए।
2: लेवल जाए।
1: हाँ तो
2: तो
1: पंचो
2: पंचो राम
1: राम राम।
2: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। संस्कृत कार्यक्रम में सुनिए वार्ता सिद्ध नाम कपिलो मुनि है। वार्ताकार हैं प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा।

0: अत्र तव कृते विभूतीनाम् एकदेश एव समासेन प्रोक्तः। संसारे यद्यद् विभूतियुक्तम् अर्थात् ऐश्वर्ययुक्तम् कान्तियुक्तम् शक्तियुक्तम् च वस्तु वर्तते, तत्तद् वस्तु भगवतः तेजोंशस्य अभिव्यक्तिरेव वर्तते। कपिलो यतः सिद्धेषु अतिशयेन ऐश्वर्यसम्पन्नः, अतः भगवता प्रोक्तम् सिद्धानाम् कपिलो मुनिः इति।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता सिद्धा नाम कपिलो मुनि। वार्ताकार थे प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
3: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य है। ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27

0: 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
1: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
0: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको जल्दी संपन्न कराएंगे।
0: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म एयरलिफ्ट से। आवाजें हैं अमाल मलिक और अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार की। गीतकार हैं कुमार और संगीत है अमाल मलिक का।

रसरंग के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। आवाजें हैं गोपी सुंदर और चिन्मय श्रीपदा की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है विशाल शेखर का।

फिल्म का अगला गीत है रांझणा फिल्म से। आवाजें हैं जावेद अली, कीर्ति और पूजा की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग, और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म तमाशा से। आवाजें हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं चंद्रा रानी, रचना है सुदर्शन फकीर की।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अगली रचना है अहमद फराह की, कलाकार एक बार फिर से चंद्रा रानी।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी चंद्रा रानी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला साइंस एंड टेक।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आपका।
2: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
3: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत बधाई।
2: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
3: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मपत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती

0: है, तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है, तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी, और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी, और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है, और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को। जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है, तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम है कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं
0: चलेगा। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, 2034 के बाद 2039

0: जी देंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है।
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: देखो सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे उस जमाने में। विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी आप तो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं

0: कदम उठाए हैं उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है और जनता ये सच जानती है। देखिए प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को।
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अलनीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है।

0: क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है। तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया, उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए। तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है, तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है। तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक, हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से, जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई,

0: इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ने तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का, हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनर्जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब

0: कॉलोनियल शासन था, तो अंग्रेज़ों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइस रॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था, जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉक यार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा, बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं, और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है, और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे

0: 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस ओर हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमेटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार संध्या सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची, और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया, तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
4: The topic for the Governing Council meeting.
5: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
4: To youth, to working life, to old age.
3: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
6: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की

0: संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सब

0: सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त

0: अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अच्छा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है।

और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जुनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इख्तसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों, बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलयाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजूं हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई

0: ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी, जिससे लोगों को वसीतर मालूमात, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णो ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए FM ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है, जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संगे मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज में शेख मोहम्मद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा खुसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सी अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीब के लिए मकान मोदी हुकूमत की तवज्जो का अहम शोबा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज्यादा मकानात देही इलाकों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गजा की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान PM सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांचा फरोशों को 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ़ुज़ का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेजी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाजे के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायजा लेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टेडियो एस्टिका में होगा। इसके साथ ही एक माह से ज्यादा अरसे तक चलने वाले इस अजीमुशान टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले के ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का यह सबसे बड़ा

नसीब वालों को ही किसी का ऐसा साथ मिलता है, नसीब वालों को ही किसी का ऐसा साथ मिलता है जिसकी मौजूदगी से हर लम्हा खास मिलता है, जिसकी मौजूदगी से हर लम्हा खास।

हुस्न जब अपनी तमाम रौनक के साथ उतरता है, हुस्न जब अपनी तमाम रौनक के साथ उतरता है, चांद भी उसकी चमक के आगे फीका सा लगता है।

इश्क की दास्तां छुपाए कहां छुपती है दोस्तों, इश्क की दास्तां छुपाए कहां छुपती है दोस्तों, पत्ता पत्ता शाख शाख उसका पता बता ही देती है।

सफर की थकान भी मुस्कुरा उठती है राहों में, सफर की थकान भी मुस्कुरा उठती है राहों में, जब कोई हम सफर बनकर दिल के साथ चलता है, दिल के साथ चलता है।

दिल अक्सर उन लम्हों की तलाश में भटकता है जो गुजर तो जाते हैं मगर उम्र भर महकते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: बॉडी में जो म्यूजिक है उसमें भी तो मैजिक है, इसमें जो रिदम है वो।
2: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास जो है वो पहला पत्र है, वो है धरसीवा से भेजने वाले हैं छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा, संतोषी नगर, रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। एक और पत्र है हमारे पास ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर का। रजानगर बजट डीहा वाराणसी से मोहम्मद अनीस, मोहम्मद सफी शमी, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद रजा, मोहम्मद अजीज, कटवा मुस्लिमपुरा वाराणसी से नूरुद्दीन, गुड़िया समीर अली, गुड्डू मजीद अली से रेशमा बानो, यूकूब अंसारी, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोत, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा। और ये सारे लोग सुनना चाहते हैं फिल्म धड़कन से ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम के लिए अगला पत्र है हमारे पास भिलाई छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, दंतरेगी भाटापारा से भागवत वर्मा, हिमकेश्वर साहू, हरमिंदर सिंह चावला, मुरली क्षत्रिय खान, महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी, इनकी पौत्री मिठी मिठी और कुहू, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से, रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, और एक पत्र और है हमारे पास इस गीत के लिए, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का, और ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म दिल से ये गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, गीतकार हैं समीर और संगीत है आनंद मिलिंद का।

आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए अगला पत्र है हमारे पास। कच्ची सराय दाल मंडी वाराणसी से भेजने वाले हैं मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौराहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सिराज आलम, मोहम्मद समद, रोजी अलीशा, बच्चू लाल मौर्या, अशोक पटेल, सोएपुर रमदतपुर से, संजय नगर कॉलोनी से लालजी सैनी, अलगू यादव, भोला बस्ती से गुलशन सैनी, पिंकू विश्वकर्मा और शिव, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान और बेबी अलीशा, बागपत उत्तर प्रदेश से मास्टर मुनीर खान, संजय ढींगिया, अब्दुल सत्तार अब्बासी,

0: जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख फिरोज आलम चांदनी नाज चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलगाड़ा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से रक्षाताई खड़से ललिता संजना गणेश और कार्तिक खड़से मालती चौधरी स्वाति प्रयाग चौधरी गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयनंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित व मोहित भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी भाऊ मराठा गणेश दादा मराठा कार्तिक भाऊ मराठा परी संजना मराठा ललिता नारायण खर्चे और दसमल चौक परतूर जिला जालाना से सुरेश अप्पा दसमले सौरभ दशमले सुधाकर दशमले चौक से ही जयश्री दशमले शिवानी अर्चना काटे आकांक्षा काटे और पूरा दशमले और काटे परिवार। एक और पत्र है हमारे पास नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह श्रीमती सुषमा सिंह कंचन माला मिश्रा श्वेता रानी पांडे मदनेश्वर सिंह प्रभात कुमार सिंह सौरभ कुमार किशन पुरुषोत्तम कुमार जयराम बिंद अर्पित हर्षित विद्या संध्या अंजलि काशवी लाल बहादुर जी वैभव राज और वीरेंद्र पांडे और ये सब सुनना चाहते हैं कयामत फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
1: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना आपको पड़ता है
2: तो भुगतो।

0: आपकी पसंद कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए हमारे पास जो पत्र है वो है अहमदनगर बजडीहा से बद्रुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, अजन कुमार सिंह, मुश्ताक सुलेमानी, मौनी बाबा धाम, चोचकपुर बाजार, गाजीपुर से रामशकल चौधरी, सूरज शिवम, सत्यम आकाश, टुनटुन शक्तिमान, सक्कल मनमौजी, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से ही विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू, सरोजनी कुंती साहू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक, विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव, मुस्कान, बरेली कैंट रेलवे से महसौल, सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, नवासी हुमेरा नाज, नाजिया नूरी नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, बाबू अमन अकरम, बच्चू शेख, चीना शेख, शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुशर्रत जहानाज, शाहपुर भगौनी समस्तीपुर से मोहम्मद मशकूर आलम, तल जहानाज, बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, और ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राज से ये गीत। आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।
1: सारे जहां का दर्द समेट कर जब कुदरत से कुछ न बन सका तो उसने तुम्हारी ये दो आंखें बना दी। बहुत दर्द, बहुत कशिश है तुम्हारी इन आंखों में। दिल के फासले एहसास से कम होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए शहनाई वादन। कलाकार हैं पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी राग है केदार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन। कलाकार थे पंडित कृष्णा राम चौधरी और साथी राग था केदार। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।